0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pesh khidmat hai Arabi mein hamd-e bari ta'ala. Iska Urdu mein mafhoom is tarah se hai. اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے۔ اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی تو کریم ہے, تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Kaapta hai dil tera andeshaye toofan se kya.
3: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
13: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
13: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
13: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
14: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444, or donate online at ikca.org.uk.
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:30
2: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio on 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
13: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
14: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
9: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
14: मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Number one Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, Bradford, BD95ER, 01274914442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी सलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Tumsa koi dusra is sami pe hua, to Rab se shikayat hogi. Tumhari taraf ruk kisi gher ka hua, to qayamat se pehle qayamat.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
14: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
15: Baby.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: Oh, bittu kidhar gaya hoy?

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3489, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोत्रिस दी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Bijli.
13: जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौजूज ट्रेन सामईन इकराम, मौजूज व मोहतरम सामईन इकराम, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर आपको सुबह नाम में खुश आमदेद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बखैर अगले, अस्सलामु अलैकुम अगेन। जी बिल्कुल, जितनी भी सलामती हम एक दूसरे पर भेजें तो वो कम है। जी बिल्कुल, اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے، ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274 3066677۔

मुजस्सम इकराम, आप मुंतजिर होंगे कि आज की सुबह 9 की नशरियात में आयशा अख्तर आपके साथ ये सेगमेंट्स जो हमारे हैं वो शेयर करें कि हमने कितने सेगमेंट्स जो है आज के प्रोग्राम के तरतीब दिए हैं। और आपको बताया कि हमेशा की तरह प्रोग्राम जो है हमारा उर्दू से ही शुरू करते हैं, फिर बीच में आपको पता है पंजाबी वर्जन आ जाता है और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनका सहारा लिया जा सकता है। और जो आपके सामने गीत संगीत हम पेश करते हैं वो मेरी पूरी कोशिश होती है कि डिफरेंट जो मौसीकी, स्पेशली आपकी फीडबैक भी मेरे साथ होती है, मुझे पता होता है कि आपकी चॉइस क्या है, फरमाइश को भी मद्देनजर रखा जाता है, तो इस तरह से सारे गीतों का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहता है। आप हमें कॉल करके बता भी सकते हैं स्टूडियो टेलीफोन नंबर पर के 01274306677 पर के आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है, और आप इसमें शिरकत करने के लिए बिला शुबा हमने जी सोचा है आयशा अख्तर ने कि आपके लिए इंशाल्लाह लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी व सारी करेंगे। इस सिलसिले में भी आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। तो जनाब बात यह है कि हमारी वेबसाइट है broadforationradio.co.uk, DAB डैप के ऊपर भी आप हमें गाड़ी में आराम से पुरसकून तरीके से मोबाइल के ऊपर जो डाउनलोड किया हुआ है आपका, आप उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गाड़ी में भी इस हमारी दी हुई सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और स्मार्टफोन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं जिनसे भी बात करें तो वो हल्का एहबाब कहते हैं कि भई आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन ही होता है। आप हमें कह रही हैं कि स्मार्टफोन के ऊपर हमारा प्रोग्राम डाउनलोड करें, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करें। क्या करें, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, कुदरत के रंग हैं, हसीन रंग है, इनका इम्तिजाज है रंगों का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ थोड़ी थोड़ी वैसे मुझे गर्मी सी फील हो रही है। ये बड़ी वैसे बहुत ही दिलचस्प बात होती है कि आयशा अख्तर को कभी गर्मी फील हो, अदरवाइज तो मुझे सर्दी यहाँ की जो है बल्ले बल्ले करवा देती है। एनीवे मुज़्ज़ो मोहतरम सामईन इकराम, आपके लिए खूबसूरत तरीन जो मौसीकी है उसका भी साथ रहेगा। आज का प्रोग्राम एक लिहाज से बहुत ख़ास होने वाला है जिसमें हम ख़ास बातें जो हैं आपके साथ डिस्क्लोज भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और बेहतरीन डिस्कशन के साथ साथ हमने कंक्लूजन भी निकालना है। कुछ इस्लाही और बामकसद जिन्हें कहते हैं हमारी सोसाइटी के पहलू जो हैं उनके ऊपर एम्फसाइज जिसे कहते हैं करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी तनबीह नहीं कर सकते या फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए, चाहे वो अच्छा है या बुरे से तो खैर हम बहुत इजतना भी करते हैं। कोई भी अच्छा काम है, हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन अल्फाज में बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाए, आपका बेहतरीन साथ जो है हमारी गुफ्तगू का खासा रहे, और हम एक बेहतरीन तरीके से अपने प्रोग्राम को लेकर आगे आगे आगे आगे बढ़ते चले जाएं, यहाँ तक कि आपका जो एंटरटेनमेंट का सिलसिला है उसमें खलल ना पड़े और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होता है बिलखसूस आपको फ्रेश करने के लिए, आपकी रिफ़्रेशमेंट का ख्याल रखा जाता है, और ज़हनी कोफ्त जो होती है ना सिर्फ आपकी बल्कि यहाँ पे जो आयशा अख्तर प्रोग्राम कर रही होती है उसको भी तमानियत और सुकून मिलता है, ना सिर्फ अपनी गुफ्तगू से बल्कि इस बात से कि हमारे मोहतरम सामईन इकराम जो है बहुत खूबसूरत और दिलचस्पी से हमारा प्रोग्राम जो है वो समात फरमा रहे हैं।
آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے ہمارے خوبصورت ترین آج کے گیت, تو تھوڑا سا آپ اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا.

जी बिल्कुल। मधु स्वामी निक्राम ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर आप आयशा अख्तर के संग आज का एंटरटेनिंग का प्रोग्राम जो है वो समाप्त फरमाएंगे। हमारी वेबसाइट brafrationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जैसा कि मैंने आप से ये बात जो है अभी डिस्कस की है, बताई है, आपको शेयर की है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो लास्ट वीक हमारे साथ लगी और लगी एज अ कम्युनिटी, जो हमें कहीं ना कहीं पे दिल दहला देने वाले जो लम्हात हैं ना, उनको हमें फेस करना पड़ा। और यकीन करें कि ये जो प्रोग्राम है इस वक्त, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि बेहतरीन और एक स्टैंडर्ड और म्यारी प्रोग्राम जिसमें इंफॉर्मेशन का भी साथ रहे, हमारे माशरती इस्लाही पहलू भी मद्देनज़र रहे और आपकी बेहतरीन मौसीकी जो है वो आपके साथ साथ रहे। सामीन इकराम, प्रोग्राम का आगाज हो रहा है और आगाज में मैं आपको कोई ऐसी बात जो है, जो आपको पता है कि बिगिनिंग में कुछ ऐसी बातें कर दी जाएं तो थोड़ा सा मूड जो है ना वो सेट नहीं रहता। फिर इसलिए मैं सोच रही हूं कि इन बातों की तरतीब ऐसे हो कि हम बीच बीच में इन बातों की तरतीब भी रखें ताकि हमारा मूड भी बहाल रहे, आपका मूड बहाल रहे। और बहुत ही एक ग्रेट न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आप वाकई हकीकत में वो जो गुफ्तगू है वो सुनना पसंद करेंगे। तो आप बेफिक्र रहें, मुझे पूरा ख्याल होता है बड़ी एहतियात के साथ। और बिगेनिंग में आपके लिए एक बेहतरीन सी जो है, मैं एक बेहतरीन सा जिसे कहते हैं कलाम भी रखती हूँ ताकि हमारी शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो और अच्छे तरीके को संग संग ले के हम आपकी जो पसंद है उसको आरा को पेश करें। इसमें जो बहुत जिसे हम वेरी गुड न्यूज़ कहेंगे वो आफ्टर दिस कलाम जो है सुन लेते, बहुत ज़बरदस्त है। और शुरू में जब थोड़ा सा हम, आपको पता है कि सुबह सुबह मूड जो होता है ना उसको, उसका बैलेंस रखना ना, थोड़ा सा तवाजन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में ये कलाम जो है, हमारा पूरा जो प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है उसका बैलेंस बहुत अच्छा रखेगा। और आई होप यू विल इन्जॉय दिस कलाम के, और थोड़ा सा रूह की और दिमाग की जो तरावत है उसका ख्याल रखें और उसको हम मद्देनजर रखते हुए ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। और फिर आयशा अख्तर आपके साथ बहुत ही खूबसूरत जो हमारे आज के प्रोग्राम के तरतीब दिए हुए हिस्से हैं उनके ऊपर रोशनी भी डालेगी। तो आइए खूबसूरत सा कलाम जो कि हमारा हक भी बनता है सुनने का, आइए जरा समात फरमा।

0: जी मोजो मोहतरम सामईन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 14:13 AM पर आयशा अख्तर के संग आप एक दिलकश सी सुबह नौ में नशियात जिसे कहते मुलाहजा समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, बहुत कुछ कहने को है और हमेशा की तरह घड़ी पर भी नजर है। इससे पहले कि आपको एक बहुत जबरदस्त सा सॉन्ग जो है डेडिकेट किया जाए और यकीन करें कि आपकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाएगी, ऐसा करते हैं कि बहुत ही एक गुड न्यूज से अपनी जो ये मेरी शुरुआत है वो एक गुड न्यूज से करते हैं कि अभी आप देखेंगे कि हमारी लाइव कॉल्स जो हैं न सिर्फ ये वेंसडे के दिन होंगी और बल्कि फ्राइडे भी एहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए बहुत सी यंग जनरेशन यूथ जो है वो माशाल्लाह जी बड़ी बेदार हो गई है और उनकी तरफ से मुझे बहुत ही खूबसूरत फीडबैक के साथ साथ उनका तआवुन जो है वो मिल रहा है और वो बड़े एंथुजियास्टिक जिसे कहते हैं और उनका पैशन देखकर मुझे एहसास हुआ कि जी बिल्कुल आपके लिए आयशा अख्तर जो है बेहतरीन सी जो है आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला बिल्कुल जारी हो सारी वो फ्राइडे के दिन। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था कि ऑब्वियसली कि आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज और यू नो गिव यू एनी काइंड ऑफ ओपिनियन रिलेटेड टू ब्यूटी और हेल्थ, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई मस्ट इनवाइट समवन हु कैन यू नो टेल यू द ब्यूटी थेरेपीज एंड मोर अबाउट स्किन केयर। जी बिल्कुल, तो मैंने लकीली कि मेरी ऐसी फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो गई जो प्रोफेशनल है और वेरी प्रोफेशनल, एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत देर से माशाल्लाह खिदमत अपनी अंजाम दे रही हैं ब्यूटी में। जी तो मैंने सोचा कि मेरे मौजूद सामईन इकराम जो हैं वो इतना ऑब्वियसली आपका साथ होता है, आपकी फीडबैक, आपका हौसला, एनर्जी जो है वो मेरे लिए आपके अल्फाज बनते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ तैयार करके रखूं और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पहले करवा दूँ। और स्किन से रिलेटेड जी प्रोफेशनल हैं, बहुत क्यूट सी मेरी फ्रेंड है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाल्लाह वेंसडे जो है वो यहां पे तशरीफ भी लाएंगी। आज मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को पता नहीं है अभी तो मैंने लाइव कॉल्स जो है उनका सिलसिला भी अभी शुरू नहीं किया हुआ और तो फिर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंशाल्लाह लाइव कॉल्स का सिलसिला रहेगा और वेरी प्रोफेशनल, वो खुद भी माशाल्लाह शी इज वेरी क्यूट, मैं क्या कहूं कि अब इंशाल्लाह आप खुद ही उसकी जुबानी पूछ लेंगे और जब वो बात करेगी तो आपको बात के करने के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो कितनी प्रोफेशनल है। और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और इंग्लिश डॉक्टर हैं हमारे साथ, वो काम करती मेरे साथ नहीं मेरी फ्रेंड के साथ, तो वो भी वो कह रही थी कि फर्दन फर्दन हम इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है स्पेशली विमेन जो हैं वो जी ब्यूटी का बड़ा ख्याल रखती हैं और क्यों ना हो कि ये ब्यूटीफुल सा इनोसेंट सा चेहरा जो है हमें अपने घर में जो है वो जाज़बे नजर बनाने के साथ साथ आप बस सब कुछ समझ गए होंगे कि हमारी ब्यूटी स्पेशली ख्वातीन की कितनी जरूरी होती है। जी मेरी घड़ी की तरफ नजर है, आफ्टर द ब्रेक एक जबरदस्त सा आपको डेडिकेट करते हैं जी एक सॉन्ग और फिर असी उतरांगे जी पंजाबी देते ते फिर तुसी पंजाबी वर्जन दे विच साढ़े कोलो वधिया वधिया ते मैं कहनी हाँ दिल लुभाने वाला एक खूबसूरत जिहा प्रोग्राम तुसी सुनूंगे ताकि तबीयत यार ये बहाल हो जाए, ये टेंशनें दूर हो जाए हमारे दिमाग से, जहाँ कहीं जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है इस वक्त हम काम काज में, तो लुत्फ दोबाला हो जाए। जी बिल्कुल, बस कुछ लम्हों में ब्रेक पर चलते हैं और आफ्टर द ब्रेक आपके लिए ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम और बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, साथ रहिए हमारे।
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: जी, बहुत सामीन एकराम, Bradford Asian Radio 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग आप एक दिलचस्प प्रोग्राम जो है समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। जी बिल्कुल जी, हुन असी थोड़ा जा पंजाबी टच दे उते आ जाने आ। हमेशा दी तरह पता थानू के पंजाबी जड़ी आ असी हुन चूंके इस जगह दे उते रहने आ कि इत्थे बहुत ज़्यादा पंजाबियां दा जैसे मिक्सचर भी कहा जा सकदा ना, पंजाबियां दा ते नहीं पंजाबी लैंग्वेजेस दा, ते फिर वो थोड़ा जिहा मिक्स हो जांदा एक्सेंट जिहड़ा कि एक्सेप्टेबल आ, इट्स नॉट वेरी बैड। तो लेकिन ए गल है जरूर के असी अपने लफजां दा जिहड़ा अखर जिहनूं कहिंदे ना सहारा लैण लई ना मैं कुछ वक्त ऐसा आंदा कि थोड़ा जिहा घबरात नहीं कहांगी लेकिन मैनूं थोड़े जिहे अखर जिहड़े ना जिन्हों कहें तलाश करने पैंते। एनी वे गल हुंदी यह कि वह कहें कि तुसी अपना जिहड़ा मुद्दा और अपना मकसद और गल करने दा जिहड़ा एक मकसद हुंदा वह तुसी दूसरे तक पहुँचा रहे, दूसरों को समझ आ रही है और प्रोग्राम बहुत अच्छी नहज दे उत्ते जा रहा, मकसद यही हुंदा, ठीक है ना। वह कहें सियाने कहें गल समझ आ गई ना तो बस फिर ठीक आ, तो मकसद भी साडा गल नूं समझना ही आ। जी मेरे मौजा सावे ने क्राम, असल दे विच एक तो एक्साइटमेंट सी कि तुहानू जिहड़े साढ़े ब्यूटिशियन ना प्रोफेशनल मेरी फ्रेंड बहुत वाकई एक कहांगे कि दुनिया जिहड़ी उन्हां कोलों फैज़ पा रही और फिर उन्हां दे जिहड़े प्रोफेशनल अगे डॉक्टर्स वा इस तरह ओ खैर एक न्यूज़ जिहड़ी ओ तुहाडे तक पहुँच गई जी, बहुत शुक्रिया। गल हैगी है कि प्रोग्राम जिहड़ा साडा ना ओ कुछ यकीन करो कि दिल जिहड़ा ना अंदरों बड़ा जिन कहिंदे ना पसीजिया आ और दिल खिचिया आ वा, जिहदे विच सानूं कहांगे कि बैठे बिठाए इदां हुंदा कि सुबह अख खुली आ ते साडा मूड हुंदा कि बड़ा जौली हुंदा ते असी जाके जी ताज़ा फुल्लां देखिए वॉक करिए। वो तो पहल बाद की गल है कि पहले उठ के नमाज असी जारी गल है कि अपने अकॉर्डिंग टू द रिलीजन असी चलना ते फिर नमाज कुरान तो बाद असी दिल करदा कि कोई चाय शाय जो भी करनी चहलकदमी ये ते वो। अच्छा ये सारे अमूर जदों असी अंजाम दे ले ते मोबाइल ते असी जाने हाँ जी चलो अज देखिए साढ़े जिहड़े चाहने वाले आ उन्होंने की सानू फीडबैक भेजी ते की दिस एंड दैट। चलो जी मोबाइल जदों खोलदे ते सामने ही साढ़े एक ऐसी न्यूज़ आ जाती आ कि जिहड़ा साडा दिमाग एकदम असी शॉक्ड हो जाने और सानू समझ नहीं आती कि यह हकीकत की दुनिया दे हो रहा या ये असी कोई सपना जिन्हों सुफना भी कहें सपना देख रहे हैं। नहीं असी कहने नहीं ये वाकई साड़िया नज़र तो यह वाकया जरा गुजर रहा। असी चूंकि मुआशरे के अफराद हाँ सारे भैन भाई जड़े मिल के एक मुआशरा तश्कील देंगे। अच्छा वो जी जड़ी लेटेस्ट न्यूज़ पिछले वीक दे विच होई दिल दहला देने वाली, तुहानु पता कि एक जड़ी जूलर्स शॉप दे उत्ते की हुन मैं कहां कि वो बई साढ़े सामने नहीं आया कि वो किहड़े जालम लोग आ जिन्हां ने ये हरकत की आ। लेकिन वो सियाने कहिंदे ना कि धीए क्या तो नोए कन्न कर कि साड़ी कम्यूनिटी दे अगर अफराद पाए गए तो फिर साड़ा इत्थे जड़ा वा रहने दा मकसद जड़ा वो की आ, असी इना बुराइयां नू जड़ा किस तरह खत्म करना। हर कोई कहिंदा भी मैं ठेका नहीं लै रखिया, लेकिन मैं एक गल जरूर कहना चाहवांगी कि जदों वो वीडियो दे उत्ते नज़र गई ना तो इतना दुख होया मैनू कि जिहड़े आसे पासे दे जिहनू हुण मैं पंजाबी जी दवल के बोल रही हाँ वो आसे पासे दे लोग जिहनू गवांढी चलो कह लो वो जिहड़ी ट्रैफिक वाह आसे पासे दी दुआले दी ते इर्द गिर्द कह लो ओ हुन वेट कर रहे आ कि इन्हें हुन एक टक्कर मारी आ शॉप दे विच ते हुन तू मारी जा साडा इहदे नाल कोई काम नहीं, ओ पिछे खड़ी आ गड्डी है मैनू रंग भी याद आ हुन फिर वो कहूगे बई बड़ियां गल्लां बड़ी एहतियात नाल करनियां पैंदियां ओ गड्डी पिछे उहने टक्कर मारी ओ तू ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਸ ਸਾਨੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਮਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਧਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲੋ। ਭਾਈ ਕੀ ਆਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 01274300667 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਆ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ।

जी बिल्कुल मोज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इस वक्त आप प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है वो समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274-306677 है और हमारी वेबसाइट है broadfederationradio.co.uk। पंजाबी दे विच गल कर रहे हैं ते आज दा असल दे विच मेरे कोल जड़ा एक शेर सिगा के वो ये सिगा के तेरे मन चले का सौदा है, तेरे मन चले का सौदा है, जैसी चाहे ले लो, खट्टी चाहे खट्टी ले लो, मीठी चाहे मीठी ले लो। जी बिल्कुल सामईन इकराम, आप तुहानू भी पता होएगा कि जिंदगी दे विच ऊंच नीच भी लगी हुंदी। देखो हुन इस तरह दे अनयूजुअल जिहड़े आ वाकियात वो भी साढ़े सामने आउंदे आ, सानू इन्हां तों तवक्को या उम्मीद नहीं हुंदी कि यह जिहड़े वाकियात साडी जिंदगी दे विच लगनगे। ये साढ़े खुद दे हत्थां दे विच वा कि असी अपनी जिंदगी जिहड़ी आ ओहो खूबसूरत भी बना सकते हैं, अपनी जिंदगी नू असी औखी भी कर सकते हैं, सौखी भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जिहड़ा ना साडा सोसाइटी च लग्या आ, असी इहनू फेस करने लई बहुत ज़्यादा बाज़ औकात जद्दोजहद भी जिहड़ी आ वो कर

0: जी बिल्कुल, मौजूद सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर आज आपके लिए बेहतरीन सिलेक्शन लेके आई है। जी बिल्कुल, ऐसा प्रोग्राम जी मिक्स ही हो जाता वा, फिर मैनू भुल जाता कि मैं पंजाबी बोल रही हाँ, मैं उर्दू बोल रही, फिर मैं चलो तुम पता तो है ही है कि फिर पंजाबी भी चलती उर्दू भी चलती, साढ़िया अपन जबाना जो भी सू चंगा लगता, मेरा मतलब है कि जो सू कजी ईजी लगता तो फिर असी जिड़ी जबान सानू ईजी लगे ओदे उत्ते आ जाईदा। मैं पहले ही आख्या ना कि साडा जिहड़ा असल मकसद आ ओह गल तुहाडे अगे तक टोरनी आ, तुहानू समझ आ गई ना गल दी, तो बस ठीक है ना, तो फिर रौला तो कोई है ही नहीं। तो बड़ा वधिया लगता, बड़ा चंगा लगता कि जदों तुसीं ना बड़े मिठे मिठे अंदाज दे विच तुसीं है ना जदों तुहाडे नाल मुलाकात हुंदी आ मेरियां फैमिली फ्रेंड्स दे नाल और बाहर किधरे मुलाकात हुंदी, तो मैनू यकीन करो कि जिन्नी तुहानू खुशी हुंदी ना मेरा प्रोग्राम सुन के उस तों वध मैनू खुशी हुंदी आ कि तुसीं मेरियां गल्लां इन्ना इंजॉय करदे आ। और फिर कहिंदे जी तुहाडी पंजाबी तां बहुत ही वधिया लगदी, मैं कहिंनी आ जी मैनू भी तुहाडा साथ संघ जिहड़ा बड़ा ही चंगा लगता, जो तुसी नहीं सुनोगे तो फिर साडा प्रोग्राम तो फिर बेकार हो गया ना, तो इसलिए फिर मैं उन्होंने को पुछदी भी रहनी हाँ तुसी है ना मजीद सानू दसो, तो तुसी भी कॉल करके भी सानू दस दिया करो कि होर असी अपने प्रोग्राम दे विच वधिया वधिया गल्लां ते कोई संगीत दा एडिशन किदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, साड़ी वैबसाइट हैगी है जी broadfoundationradio.co.uk, ते साड़े स्टूडियो दा टेलीफोन नंबर लो जी हुण पंजाबी च सुन लो 01274 3006677, ते वधिया वधिया हो जांदा कि जदों सानू पंजाबी दे विच आख्या गया इह नंबर जिहड़ा ना उह बड़ा याद रहिंदा। उह वैसे मैनू पुछदे आ मेरे सारे संगी साथी कि तू एड्डी वधिया पंजाबी कित्थों सिखी आ, मैं कहनी आ जी देखो जी सच्ची जड़ी गल मैनू खुद भी नहीं पता मैनू खुद भी नहीं पता, बस गल्लां जिहड़ियां होंदियां सानू खुद भी नहीं पता होंदियां ओह साडे विच कोई टैलेंट छुपिया आ हुंदा। मैं पहले तुहानू दस्सिया सी कि मैं पढ़ी सीगी पंजाबी, बोल ते लैंदे जदों लिखने दी वारी आउंदी सी ना उदों मेरी ना जान जांदी सी, पर मैं बड़ी मेहनत मशक्कत दे नाल लिख लैंदी हुंदी सीगी, लेकिन फिर टीचर कहिंदी और क्यों अपने आप नूं वक्ता डालिया आ, कोई होर सबजैक्ट रख लै, ऐ तेरे वस दा रोग नहीं, तू बोलदी बहुत चंगा वा पर तैनू ना लिखने दे विच तू सारी फिर खराब कर जाऊंगी। मैं कहा अच्छा जी, मैं ते हमेशा अपने उस्तादां दी गल जी बड़ी सुननी आ, ते मैं अल्लाह दी शुक्रगुजार भी हाँ कि मैनू एडे सोहने अल्लाह ने चंगे चंगे उस्ताद दिते कि जिन्हां ने मेरे टीचर्स जिन्हां ने मेरे इत्थे तकर मैनू अपनाने दे विच उन्हां दा बड़ा ही साथ आ जी। असीं जी बाकी गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल जारी रखांगे, बड़ा ही सोहना, मैं कहा इस तों पहले कि असीं ब्रेक दे उत्ते उपड़ जाइए, ते ऐ जिहड़ा ना बड़ा ही वधिया चंगा चंगा जिहड़ा ना गाना वा, चलो फिर असीं इह सुन लैने आ, फिर देर किस गल दी।
1: Yes, Ragamuffin, big up the whole of Punjab massive, one love, one rhythm, one...

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी मज़ो मोहतरम ते बहुत ही काबिले तारीफ भी साढ़े सुनने वाले हो तुहाडे तक साड़ी आवाज़ जिहड़ी आ ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM दे जरिए पहुँच रही है और तुहाडा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रोग्राम नू ज्वाइन करने का फीडबैक देने का साढ़े नाल कॉल्स करने का और साढ़े नाल इस वेले प्रोग्राम जिहड़ा ये पाकिस्तान तो भी खुद मेरी अपनी फैमिली फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया या फीडबैक मिल रही है और तबीयत खुश हो रही है जी। साड़ी तबीयत अल्लाह का शुक्र आ अल्लाह तला तुहानू ते सानू सब नू खुश रखे जी आमीन। ते जिन्हां दे नाल ये इतना बड़ा सानिहा भी होया अल्लाह तला उन्होंने भी अपनी हिफ्ज़ोमान च रखने के नाल नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्या रिफतां ते बरकतां दे आमीन सुमा आमीन। साढ़े वो भी ब्रदर्स जिहड़े आ उन्हां दी फैमिली साढ़े नाल ज्वाइन किया है जी प्रोग्राम और यकीन करो कि मेरी पूरी कोशिश हुंदी आ कि जिस तरह तुसी अक्खर जिहड़े आ वो कुछ प्रो दिंदे आ मैनू मैं वो इसे तरह अगे जिहड़े आ वो वधा देवां ते ताकि खैर दा भी एक सिलसिला अगे बढ़दा रहे ते बेहतरीन जिहड़ा साडा प्रोग्राम आ वो तुहाडे ते साडे तक जिहड़ा वा ऑफ कोर्स मैं खुद भी सुन रही हाँ ते साडे तक ये पहुँचदा रहे और असी एक बड़े जिहनूं कहिंदे आ ना कि मंजे हुए ते एक खुशगवार माहौल दे विच साडा मकसद भी पूरा होवे कि असी मुआशरती जिहड़ियां बुराइयां उन्हां नूं भी काबू च रखदे होए उन्हां नूं काबू उन्हां दे उत्ते पाउणे दी कोशिश करदे होए तुहाडे नाल म्यूजिक दे ओ दुनिया तक तुहानूं लै जाइए कि हुण जिहड़ी तुसी है मस्त कर देने वाली एक धमाल धमाल सुनूंगे ना ओ भाई मैं फिर कह दिनी कलाम हो कहिंदे नहीं जे धमाल है तो धमाल कहना सौंग है तो सौंग कहो इस तरह तुहानू पता चल गया गल समझ आ गई तो बस ठीक है। तो मैं कह चलो जी मैं इदा ही मैनशन कर दिनी तो साड़ी वैबसाइट हैगी है जी ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk ते साडे स्टूडियो का टैलीफोन नंबर 01274306677 और यकीन करो कि जिस तरह तुसी फोन का भी इस्तेमाल कर रहे हो और जिस तरह इस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया वा कि जिदे विच साड़ी जिहड़ियां मुआशरे दियां बुराइयां वा उन्हां नूं भी असी साथ नाल नाल संग संग समेट रहे हां और असी अपनियां औलादां नूं सारे जिने मिल के उन्हां नूं इह जिहड़े गंदे गनौने काम करने वाले आ उन्हां तों दूर रखना वा ते उन्हां दी तरबीयत असी अपनियां औलादां दी इस कहिंदे आ ना कि तरीके ते नहज दे उत्ते करनी अल्लाह ताला सोहना अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे ते इदां दे जिहड़े काम करने वाले आ अल्लाह पाक उन्हां नूं जे ते ओह हदायत दे काबल आ ते अल्लाह ताला उन्हां नूं हदायत देवे ते अगर वो इतने मुआशरे दा नासूर बन चुके आ ते अल्लाह ताला उन्हां दा कला कमा करे आमीन। असी ते दुआ कर सकदे क्योंकि इस वेले साडे तक कोई भी खबर नहीं आई कि जी वो साडे अपने आ या कोई आ या किने हरकत जिन्हें भी की बहुत बुरी की चलो असी हुण दूर तक की जाना लो जी हुण असी अज साडे गम दे जिहड़े बादल अल्लाह ताला सब दे दूर करे आमीन। ते चलो हुण है ना थोड़ा जिहा इस माहौल च अपने आप नूं डालिए कि मेरे खुद दिल दे उत्ते जिहड़ा बोझ बोझ है ना यह थोड़ा जिहा बोझ जिहड़ा ना वो चलो मिलके असी हुण हल्का करने की कोशिश करें।

0: DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD9 5VR 01274491।

0: खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: फास्ट ट्रक, फोर्कलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेड फूड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
0: 33 वेटले लेन ब्रेड फूड,
1: 01274201679,
2: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी मोजा सामीन इकराम, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो 14:13 AM पर जी मोजा सामीन इकराम, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो 14:13 AM

जी सर, बहुत ही काबिल एहतराम सुनने वाले हो जी, ब्राडफर्ड एशियन रेडियो 1413 AM वालों तुहाडा शुक्रिया। और हुण ते घेरा पा लिया, आशा अख्तर नूं घेरा पा लिया। हाय रब्बा, कहिंदे हाय रब्बा मैं कित्थे जावां। और मेरे घर वाले कहिंदे ओ तू कित्थे ना जा, तू इत्थे ही रह। मैं भी कहनी हाय रब्बा, अल्लाह तेरा शुक्र भी आ कि मैनू इदा घेरा पिया जी। मैनू तो फरमाइशा दे एक जिहड़े कहिंदे ना जी समंदर ते दरिया इत्थे बह रहे आ। और यकीन करो कि यह फरमाइशा जदों मैं तुहानू लगाईआं ना, तो मैं कहनी हुणे ही जिहड़ी है ना साडे सुनने वालेयां दी लिस्ट थले थले जांदी ना, यह उत्ते उत्ते उत्ते उत्ते आएगी। देखना जी, बहुत वधिया साडे कोलो साडे प्रोग्राम दी खुशबख्ती कि सानू पाकिस्तान चो वी ज्वाइन कीता आ उहनां दी। बहुत ही जी, अगर तुम सुन रहे हैं शाम जी, अगर तुम प्रोग्राम सुन रहे तो जरूर तुहाडी हुण फरमाइश मैं लगान लगी हाँ। ए वैसे वाकई मैनू खुद भी गाना जड़ा ना बहुत ही वधिया लगदा। और तुसी एदी फरमाइश कीती ते मैं सारे जिहड़े मेरे उम्मीद करदी हाँ कि सुनने वाले जिहड़े ओह भी इहनू सुनणगे, ते सानू इत्थों मैनचेस्टर दे विच्चों जॉइन कर लिया जी चौधरी रुखसार अहमद साहब ने भी। ते इस तों अलावा साडी बैक होम फैमिली जिहड़ी है ओ जी, नाम उन्हां दे मैं ओ कहिंदे जी ना ही दसना, लेकिन वो साडे नाल आ जी प्रोग्राम दे। उन्हां दीआं भी बहुत वधिया फरमाइशां भी आ साडे नाल। ते इस वक्त एक फरमाइशां दा जी ढेर लग गया, और मेरी कंप्यूटर ते नज़र जा रही है। इस तो पहले कि कंप्यूटर जिहड़ा सानू ब्रेक वल जावे, ते मैं जी ए शाम जी दा गाना जिहड़ा उन्हां नू डेडीकेट कर दी, ते तुहानू सारिआं नू डेडीकेट कर दी। बहुत वधिया ते चंगा जिहा गाना सुनो हुण तुसीं।

0: वाह वाह जी, बिल्कुल वाह वाह। और क्या कहूँ, होर किद्दां मैं तारीफ करां कि इन्हां अखरां दी, इन्हां बोलां दी, कि जिहदा कोई कहिंदे हुंदे आ कि होर ये अनमोल अखर आ। और कहिंदे ना, हुण मैं कहूंगी कि सुनने दी झस आ गई कि तड़ा बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, तुसी इतना बेहतरीन सिलेक्शन करके कि इन्हां दी वर्डिंग जड़ी आ, और उपरों तुसी जड़ी इस वेले हौसला अफजाई कर रहे हैं इतनी दूर साढ़े कोलो बैठ के प्रोग्राम दी, और यकीन करो कि ए बिल्कुल साढ़े जिहड़े कोल इस वेले होर इत्थे बड़े वधिया वधिया जिहड़े गीत साढ़े मैनचेस्टर तो चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जिहड़ा सानू ज्वाइन किया, उन्होंने एक लाइन लगी साड़ी अपनी फैमिली दे। और मैं कहनी कि जिहड़े ए बोल हुंदे है ना, ए रूह दे विच सरूर पैदा कर दिंदे आ, और इतनी चाशनी और इतनी मिठास इन्हां अखरां दे विच कि मैनूं वैसे वाकई लगन लग गया कि मेरा मूंह मिठा मिठा हो गया। ते तुहाडा की ख्याल आ कि जिहड़ा थोड़ी जिही तबीयत दे उत्ते बोझलपन सीगा तुहाडा दूर होया ना सब दा, जिथे जिथे मेरे भैन भाई प्रोग्राम सुन रहे आ, जिथे जिथे साडी ऑडियंस साडा प्रोग्राम ये सुन रहे आ, और कुछ न्यूज़ ऐसियां सीगियां थोड़ा पिछले वीक कुछ ऐसे लगे रहे साडे नाल ब्रैडफर्ड दे विच वाकियात कि जिन्हां ने सानू हिला के रख दिता। लेकिन चलो, बाकी दी गुफ्तगू असी करदे आ ब्रेक तो बाद।
1: It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
7: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444. or donate online at ikca.org.uk.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी मोजे सामीन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर आशिया अख्तर के संग एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प सा प्रोग्राम जो है वो आप समात फरमा रहे हैं। जी ए दिलचस्प इसलिए हो गया कि तुसी उच्चे नीवें जड़े है ना असी जिंदगी दे सफर तय कर रहे हैं ना, उच्चियां नीवियां थावां दे नाल नाल कदी पंजाबी तो सहारा लिया जा रहा ते कदी अपनी असी जड़ी आ जिन कहिंदे ना कि अपने मन दी इच्छा और मन दी तमन्ना जड़ी आ उह पंजाबी दे विच कदी उर्दू दे विच लै के उन्हां दा सहारा असी तुहाडे अगे एक बेहतरीन जई जड़ी आ अज दी नशरियात पेश करने दी पूरी आशा अख्तर कोशिश कर रही है जी। और यकीन करो कि जड़ियां फरमाइशां दे अंबार मेरे को लगे आ और मैं खुद इतना उन्हां तो लुत्फानंदोज हो रही हाँ। और जड़ा हुण तुहाडे अगे यह जड़ा पंजाबी दा मैं गीत रखांगी चौधरी रुखसार अहमद साहब दा, फिर तुसी शुक्रिया अदा करूँगे। इस तो पहले जड़ा असी सुनिया इन्ने मिठे मिठे जड़े ना असी रस पी चुके हाँ और जिन कहिंदे ना कि असी उहदे विच मिठाइयां भी खाधियां और असी फ्रूट भी इन्ने खाधे। और मैनू यकीन करो मैं गल कर रही हूँ तो मैं इस तरह लग रहा कि मेरे हाले भी मूँह दे विच ना शक्कर और देसी घी आपको वैसे इनका कॉम्बीनेशन कैसा लगता है ए तो याद है ना असि बचपन दे विच। वैसे देखो जी ए हुण जे खुल के गल्ला हो गई फिर तुसी कहना लो जी ए ते दसो, लेकिन देखो जी सानू अपनी नी बुनियाद जड़ी भुलनी नहीं चाहिए। इन्ने थके हारे जदों होने सीगे स्कूल और कॉलेज दे विचों स्कूल वाली एज दा वाकया ते असी रोई पिटी दा सी कि घर च की बनिया ते अम्मा साडी आखनी है बड़ी प्यारी बड़ी सोहनी अम्मा ते बड़ी ओह माँ जड़ी है ना। बस हुण ए कि मैं इस तो पहले मैं रोन ना लग जा। उन्होंने कहना की घर च कमी आ, आ देखो ते मक्खन पिया मलाई पई ते नाल थोड़ी जी शक्कर पाओ सानू ते होर गुस्सा। असी कहना नहीं असी ए नहीं खाना ते असी ए खाना, असी आ नहीं खाना ते बड़े असी बनेदा सीगा कि जी असी ते बड़े नवाब असी ते है ना बड़ा जी एक मारका सर करके आए हाँ स्कूल कॉलेज स्कूलों स्कूल स्कूलों गई दा सी उदो उस वक्त तो स्कूल चो आए और साढ़े लिए कुछ भी नहीं साड़ी साड़ी माँ ने बेचारी ने अगे पीछे ला जी बेचारे तो हम हैं वो तो जन्नती हस्तियाँ अलहमदुल्ला। ते चलो साढ़े नाल नाल इन्ने सोहने अखरां इन्ने सोहने अखर जिहड़े तुसी गाने दे साढ़े लिए सिलैक्ट कीते ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

जी की कहिए, तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया कि इन्नी तुसी मैनू दे दिने आ, की कहिंदे आ, इक माशाल्लाह इज्जत दा बहुत शुक्रिया। इज्जतां च अल्लाह पाक आप तुहाडे ते साडे सब दे इजाफा करे, आमीन। सब दियां इज्जतां अल्लाह पाक सलामत रखे। और इन्नी सोहनी, यकीन करो कि फीडबैक मिले तां फिर ते बंदा सतवें आसमान ते चढ़ जांदा, लेकिन मैं नहीं चढ़ना चाहुंदी। नहीं, मैं चढ़ती नहीं हूँ। मैं क्यों चढ़ा वही उत्थे सतवें आसमान ते? खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, पैर फिसलदा, अल्ला ला ला ला ला ला। ओ देखो तुसी वेला, खैर ए ते मैं हुण तुहाडी सब दी फीडबैक भी आई, और तुसी कहने कि जी 3 घंटे की बजाय 4 घंटे का। ओए देखियो मैं क्या, ओ 4 घंटे का प्रोग्राम है, मैनू पता 3 घंटे का ही। घर जाके ना, जदों यकीन करो घर जाओ कि मैं है ना इधरों जहरा के हूँ, पता नहीं मैं सम टाइम, वैसे अज तो वाकई नहीं ब्रेकफास्ट किया, तो मेरा ब्रेकफास्ट जोड़ा हों मेरिया गलां बातें ही नहीं, मेरा प्रोग्राम हों। जो मैं इधरों मैं कहनी हाँ खाना खानी है ना, वो कॉफी का मग तो पिया ही रहा ना, वो खाना कहता तू होंगी कौन इतने बैठने वाली, वो अखा बंद होंदिया तो मैं पता ही नहीं हूं मैं नींद की वादी चो खुदाया। मैं बड़ी कोशिश करती मैं नहीं सोना, लेकिन नींद वाकई जड़ी है ना, और फिर सियाने जड़े कहते स्ट्रोंग जे वर्ड्स तो है, लेकिन ये हकीकत वो कहते नींद तो सूली तो भी आ जाती। अल्लाह ताला माफ़ी दे जी, तो बस तो फिर अल्लाह, मैं वैसे गल्लां चो गल निकली सी। बिल्कुल जी, साडा प्रोग्राम जड़ा ना, उन्हां दा एक जिन्होंने साडे लई फरमाइशां भेज रहे आ, उन्हां दा एक गाना जड़ा ना, मैं ना जरा खुद ही रोक दिता सी। मैं कहा जरा इन्हें चंगी तरह असी दिलचस्पी जरा ले लईए, तो यह जरा आखिर के उत्ते जरा तुहानू रंग दिखा दईए एक इस सोंग का, जो कि तुसी अनकरीब लाइव भी, यह हुण थोड़ा जिहा क्लू मेरा तुसी समझ गए होने, लाइव भी सुनिया। बाकी यह है कि मुआशरे दे विच जिहड़े अफराद जो भी कोई गुमराही का शिकार आ, या एक दूसरे के नाल चलाकियां करते आ, या इहदे पिछे की रीजनज हुंदियां वा, अल्लाह ताला सब नूं हिदायत देवे, और इनोसेंट जिहड़े लोग आ वह जरूर सफर करते आ। बस ये ख्याल रखो कि जिहड़े इनोसेंट लोग आ उन्हां नूं तकलीफ ना दिओ, और जे तुहाडियां आपस दियां कुछ है या जो भी तुहाडे लगे हुए या मामलात या जो भी तुसी इस तरह दियां हरकतां कर रहे हैं, खुदारा रब दा खौफ खाया करो। बस असी यही कह सकते, अल्लाह ताला साडी कम्यूनिटी दे विच बड़े बड़े टैलेंटिड जीनियस लोग अल्लाह ताला कायम दायम रखे, और साडा जिहड़ा इत्थे दी जिहड़ी एक इमेज बनिया आ, साडी रैपीटेशन अल्लाह करीम होर हायर लैवल दे उपर लैके जावे, साडियां नस्लां नूं अल्लाह पाक सानू सब नूं इतने नेकी दे खूबसूरत काम करने दी तौफीक अता फरमाए कि वाकई जड़ी साड़ी कम्यूनिटी या एनहेंस्ड कम्यूनिटी, और पता चले कि अलहमदुल्ला मेरी खुद की टीचर भी मैनू उन्हों की गल याद आ गई कि हमेशा यह इतने के बोल्टन रॉयड कॉलेज की, हूँ तुम फिर कहोगे कि नाम चलो हो गया, खैर आ गलती कोई मैं बहुत वड्डी कोई गलती नहीं की, खैर साढ़े मेरी टीचर इतने की कहें होंगे सके कि देखो असी यह देखना कि असी इस सोसायटी दे ही रहे हैं, तुम हर वेले लैने के चक्कर च ना रहा करो कि असी वह भी चीज़ लै लीए, अपने नफ्स नूं लै लै के इतना मोटा ना करो, बल्कि तुसी ये देखो कि साडे अंदर रब ने जिहड़ियां कुदरती सलाहियतां फन स्किल्स रखे हुए आ, असी इस इन्हां स्किल्स नूं यूज़ करदे होए असी अपनियां राहां किद्दां बनाउणियां। यकीन करो कि साडे अंदर अल्लाह ताला ने, वो खुद कहिंदे हुंदे सीगे साडे टीचर्स, कि अल्लाह ताला ने साडे अंदर ऐसी ऐसी एबिलिटीज रख दित्तियां कि सानूं खुद नहीं पता कि असी इतने टैलेंटिड और मल्टीटास्क्ड पीपल हाँ, सी मल्टी टैलेंटिड पीपल हाँ। अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिता, तो उसका शुक्र अदा करते हुए असी इन्हां नेमतां नूं अल्लाह ताला दी शुक्र गुजारी दे विच उतना ही समेटिए कि जितना असी हजम कर सकीए। गल उत्थे ही मुक जांदी आ कि यह बहुत छोटा जर्नी आ लाइफ दा, इहदे विच असी माल हड़प करना एक दूसरे दे नाल मार धार चोरी चकार ये नहीं, बल्कि असी इत्थों अमला दा अमलां दे नाल नतारा होना, असी अमल कमा के इत्थों लैके जाने चंगे अमल। ते जी बिल्कुल सानू बड़ा लुत्फ आया जी, मैनू खुद भी बड़ा लुत्फ आया, और जिन्हां ने दात देनी सी उन्हां दा इतनी ज़्यादा दात देने दा बहुत शुक्रिया, और तुहाडा सब दा साथ, और हमेशा दी तरह मेरी रेडियो दी टीम दा हमेशा तावन नाल रिहा, और
ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਅਖਤਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਏਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹਾਈਡ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਇਤਨੀ ਹੋਰੀਬਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਖੈਰ ਯੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਇਤਨੀ ਹੋਰੀਬਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੂੰ।

अब आप लोग बातों में से बात निकाल लेते तो मैं क्या करूं। आप कहेंगे आपने मेंशन करना था कि मैंने ये डिग्री ली है, तो लेकिन तो सो व्हाट, मैंने कह दिया तो अच्छी बात है ना। मैंने अपने टैलेंट की थोड़ी सी खुद ही कदर भी करनी चाहिए ना। तो वो कहती थी कि मुझे उनका शेर बहुत याद आता है, हम ऑटोग्राफ जो उस वक्त तो दीवाने होते थे हर टीचर से, माशाल्लाह। और उनका मशाले राह है जो मैंने आपको अपने प्रिंसिपल साहब का मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे दिए थे, उस वक्त मैं सोचती थी इतने बड़े अल्फाज मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे लिए यूज कर लिए। तो कहते थे बेटी हमेशा तरक्कियों की तरफ नजर रखना है, तनजली का रास्ता नहीं देखना मेरी बेटी, तरक्कियों की तरफ। अल्लाह और तुम्हें तरक्कियां दे, आमीन। और उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे प्रिंसिपल साहब बुजुर्ग हस्ती, अल्लाह करीम, अल्लाह अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो कहते थे ये हमेशा तहारत तो नजाफत की तरफ नजर रखना। तो ये नजाफत का लफ्ज जो था ना उस वक्त मेरी डिक्शनरी में, वोकैबलरी में एक न्यू वर्ड था जो कि मैं अब इतना इंजॉय करती हूँ ना। अगर हम तहारत तो नजाफत में पड़ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरी शान। बंदा कहता है अल्लाह तू दे इज्जतें रिफतें, तू दे तो बंदा ले, इंशाल्लाह आमीन। तो ये आप सब इसमें शामिल हैं, मैं कोई गुरूर तकब्बर नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप सब माशाल्लाह इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने वाले हैं, हमारी रेडियो की टीम माशाल्लाह, और जिनकी फीडबैक हमेशा मेरे साथ रहती है माशाल्लाह। अल्लाह उनको आप सबको और हमें सलामत रखे, आमीन। हमारी आल औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे सामईन इकराम घड़ी की तरफ भी नजर है और आपका फरमाइशी सॉन्ग जो है वो भी अभी लगाना है, तो थोड़ा सा तवक्कफ करें अभी आपकी खिदमत में, आपका पसंदीदा सॉन्ग जो है पेश करते हैं।

ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਬ੍ਰਾਸ਼ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ 1413 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ, ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹਿੱਲੋ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 हमेशा की तरह सैल्यूट मेरे ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो चैनल को, 1413 AM को, जो हर खुशी गमी में भी दूसरों के साथ रहते हैं, तसल्ली देते हैं, और इतने बड़े सानहे में उन्होंने शिरकत करके उन लोगों को, उन फैमिली को न सिर्फ तसल्ली दी बल्कि अपना रोल प्ले जो है वो इतना खूबसूरत अदा किया। मैंने भी सुबह ही सुबह घंटियां बजा दी जी, हमारी रेडियो टीम बेदार हो जाए। ओए अल्लाह तो हम सब के ऊपर अल्लाह करम करे जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी कंपनी में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी जगहों पे रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे हालात, बुरे नजरियात, बुरे लोगों से, बुरे लोगों के शर से, जालम के जुल्म से, हाजदीन के हसद से, बुरे लोगों की बुराई से अल्लाह पाक हमें बचाए, और सबको ऐसे जिनको अल्लाह, हम किसी को बुरे को कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते, उसकी बुराई को बुरा कहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक हदायत दे और सबको अपनी खैर वाफियत से नवाजे। उस करीम जात का शुक्र के जिसने हमें इतने अच्छे लोगों में रखा, इतनी अच्छी जगह पे रखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये मैं पंजाबी भाई, मैनू पता नहीं चलता कि फिर मैं हूं पंजाबी दे, वैसे छड़ो जी, फिर गल लंबी हो जाएगी, हूं छड़ो सारिया गल्लां ते हूं मुकदी मकाओ, ते हूं यह जड़ा संगीत आ, गीत आ जड़ा ना, संगीतां दा मजमू, संगीतां दे विच्चों आ गीत जड़ा ना, मैं करनी कमाल, तो तुसी कहना वाह जी बल्ले बल्ले, ते चक दे फटे।

أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रॉडफोरेशन रेडियो की नशियात हैं 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में से ऑनलाइन सुना जा रहा है। हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में सुन रहे हैं, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677 पर तशरीफ लाइए, हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। सैयद हसन शाह साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि स्टूडियो के टेलीफोन नंबर पर फ़ोन कर लें प्लीज़। कुछ फ़नी ख़राबी है जो हमें उनसे डिस्कस करना है और जैसे ही वो फ़नी ख़राबी दूर होगी हम प्रोग्राम गज़ल हुस्न शेरी का आगाज़ करेंगे।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। गो गीत हमारे बस में नहीं है फिल वक्त। आप सबके अस्माए ग्रामी हमारे पास मौजूद हैं। हज़्ब रिवायत एक खूबसूरत गीत से आगाज़ करेंगे। मुझे यकीन है कि जल्द ही हमारी یہ فنی خرابی دور کر دی جائے گی جسے ہم کر رہے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والے، چاہت رکھنے والے، پیار کرنے والے تمام سامعین و ناظرین کے نام، کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، سارا دن یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹمپریچر جو ابھی 14 سینٹی گریڈ ہے 17 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ تو آئیے آپ کی محبتوں کے نام اس گیت سے آغاز کرتے ہیں۔

मोहतरम शुरका हैं उनकी पसंद के गीत शामिल प्रोग्राम कर सकेंगे। और अब चलते हैं हम आपको लेकर वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं वकार मियां, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत अपने अहले खाना के हमराह। कहते हैं कि हमारा और हमारे अहले खाना का मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम सामीन और नाज़रीन तक वो मैंने पहुंचा दिया है। वकार, आपका तोहफा हाजिर है, आमद का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, जीते रहो।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, फनी खराबी की वजह से ताखीर से शुरू हुआ, सो हमारे मेहमान जरा पीछे रह गए भगत सिंह साहब, क्योंकि अब मसाला हल हो गया है तो जो गीत आपने सुनना चाहा है वो हम उसे शामिल प्रोग्राम करेंगे। जिस मोहब्बत से आप तशरीफ लाते हैं आपका हक बनता है कि आप अपनी पसंद का गीत सुने। मैं कुछ कर नहीं सकता परदेसी मजीद साहब, जैसी भी आवाज पहुंच रही है, पहुंच तो रही है ना अब तक, ये आपके यहाँ कुछ मौसम की खराबी भी हो सकती है, इसलिए कि चौधरी रुखसार साहब भी हमारे हमराह मौजूद हैं, वो भी कहते कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका मकसद ये है कि कुछ आपके यहाँ फनी खराबी है, आज ये फनी खराबी का दिन है लगता है मुझे। बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे यकीन है कि जब आवाज़ साफ आने लगेगी तो आप मुझे खुद बताएंगे कि आवाज़ अब साफ आ रही है। आपकी पसंद का गीत मैंने नोट कर लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसे ढूंढ निकालूं, इसलिए कि आप जिस तरह से लिखते हैं इस तरह से पढ़ना ज़रा नामुमकिन होता है, या तो इंग्लिश में लिखें। बहरहाल जैसे आप लिखते हैं मैं पहुंच ही जाता हूं आपके गीत तक, और आज भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों ये पसंद थी वकार मियां की हमारे वेकफील्ड में। अल्लाह आपको और आपके अहल खाना को खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इंशाल्लाह कमर्शल के वक्फे के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट आज का गीत मुंतखब किया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर माहरुख साहिबा ने, और उसे हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, और सेगमेंट होगा एक शायर एक गीत दो फनकार। आप भी अगर कोई गीत मुंतखब करना चाहें तो हमारी तरफ से ये दावत आम है अपने तमाम लिसनर्स के लिए, मगर वो गीत दो आवाज़ों में मौजूद होना ज़रूरी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, सही है। और याद दिला दूं कि कमर्शियल मौसम साफ है जी तो आवाज़ भी साफ हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं कीजिए, हमारी आवाज़ जो है वो तमाम मराहिल तय करके आप तक साफ पहुंचेगी, और जब पहुंचना शुरू हो जाए तो आप मुझे मुत्तला कर दीजिएगा। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। मैं समा खराशी के लिए माजरत खा हूँ कि आज का प्रोग्राम थोड़ी ताखीर से शुरू हुआ और वजह फनी खराबी थी, आपको पता है ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें खराबी पैदा हो सकती है और हुई, और उसे दूर भी कर दिया गया और अब हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। दुनिया के चार कोनों में से ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। तो इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाज़ें लेकर हाजिर रहूँगा। मुलाकात होगी कमर्शियल के फौरन बाद।
1: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, Bradford Asian Radio.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
0: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा सेगमेंट, एक शायर, एक गीत, दो फनकार। आज का गीत हमारी इस सेगमेंट के लिए मुंतखब किया है हमारी काबिल सद एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा ने। मैं हूं रिफत अब्बास, आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। आज की जो मुंतखब गीत है डॉक्टर साहब का, उसके मुतालिक थोड़ी सी बात हो जाए। 1971 में एक फिल्म आई थी, नाम था शर्मिली, और इसमें शशि कपूर और राखी हीरोइन के तौर पर मौजूद थे। उस फिल्म के गीत बहुत मकबूल हुए, लेकिन एक गीत ने मकबूलियत और शोहरत की तमाम बुलंदियां तय की और आज भी पसंदीदा गीतों में लोगों के शामिल है। गीत के बोल थे, खिलते हैं गुल यहां खिल के बिखरने को, जिसे तहरीर किया था उस जमाने के मशहूर, मकबूल और मारूफ शख्सियत और शायर, जिन्हें अदबी दुनिया में बड़ा नाम हासिल था, नीरज ने। नीरज जो थे ये एक बहुत ही खूबसूरत शायर थे, और इनके बेशुमार गीत जो थे वो मशहूर हुए। मैं हमेशा जब शायरों का तारुफ कराता हूँ तो मैं उनके कम से कम 5 मकबूल गीत जरूर शामिल करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। नीरज का असल नाम गोपाल दास था, नीरज तखल्लुस करते थे, और आपने कई हजार गीत फिल्मों के लिए लिखे जो बेइंतहा मकबूल हुए, और आप उनकी शोहरत का मकबूलियत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि उन्हें, क्योंकि फिल्मी शोहरा जो होते हैं वो आम शोहरा से ज़रा से मुख्तलिफ होते हैं लोगों की सोच के मुताबिक, लेकिन ये दोनों जगह अदबी हलके में भी इनका बड़ा नाम था और फिल्मी गीतों के लिए भी बेइंतहा मकबूल थे। इसीलिए इन्हें पद्मश्री 1991 में और पद्म भूषण 2007 में दिया गया इनकी अदबी खिदमात के एवज। रही फिल्मों की, इनके गीतों की बात, तो इनके मकबूल तरीन गीतों में सुबह ना आए शाम ना आए, लिखे जो खत तुझे, कहता है जो कर सारा जमाना, रंगीला रे दिल आज शायर है, ये 5 मैंने गीत शामिल किए हैं आज। तो नीरज के लिखे हुए बोल थे और मौसीकी से उसे SD बर्मन ने संवारा था। 1971 की ये फिल्म है, फिल्म का नाम है शर्मीली, और जिन 2 आवाज़ों ने ये मकबूल गीत गाकर इसे जबां जदे आम पहुंचा दिया और शोहरत की बुलंदियां जिसे नसीब हुई वो थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। तो आज का हमारा सेगमेंट एक शायर, शायर हैं नीरज और फिल्म का नाम है शर्मिली, 1971 की फिल्म है, और इस फिल्म में हीरो थे जनाबे शशि कपूर और हीरोइन थी राखी। तो आइए इस गीत को सुनते हैं और एक शायर एक गीत और 2 फनकार का आगाज करते हैं।

दिए हुए खूबसूरत गीत आज भी हमारे दिलों की धड़कन है। अब हम पेश करने जा रहे हैं उस दूसरी फनकारा को जिसे आप सब जानते हैं, सुरों की देवी कहते हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी का। आप सुन रहे हैं सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज हमने 1971 की फिल्म शर्मिली से ये गीत हमारी मोहतरम डॉक्टर माहरुख साहबा ने मुंतखब किया है। नीरज के बोल SD बर्मन की मौसीकी। नीरज साहब कई दहाइयों तक इंडस्ट्री पर छाए रहे और 2007 में 93 बरस की उम्र में इस जहाने फानी से कूच कर गए। चलते हैं लता जी के उस खूबसूरत वर्जन की तरफ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। शायर थे नीरज, गीत था खिलते हैं गुल यहाँ, और मौसिकार थे एस डी बर्मन। 1971 की फिल्म शर्मिली से लिया गया था। उम्मीद है कि आपके मेयार पर पूरा उतरा होगा। अब हम चल रहे हैं, फनी खराबी के बायस हम पेश नहीं कर पाए थे उनकी पसंद, जो बहुत मोहब्बत और चाहत और प्यार से लीज से हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जो गीत उन्होंने लिखवाया था, मैं जिक्र कर रहा हूँ भगत सिंह साहब का। भगत सिंह साहब, आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, और इसके बाद खारियाँ गुजरात पाकिस्तान चलेंगे हम, और अगर गीत लंबा हुआ तो फिर कमर्शल के बाद अभी मैं देखता हूँ। अभी तो चलते हैं लीज और पेश करते हैं भगत सिंह साहब का तोहफा, कबूल कीजिए।

दोस्तों ये पसंद थी भगत सिंह साहब की, इंतजार करना पड़ा लेकिन हमने आपकी पसंद आपके नाम कर दी। और अब चलते हैं खाड़ियाँ, गुजरात पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब और सुनना चाहते हैं ये गीत। आपकी पसंद हाजिर है, कबूल कीजिए। आपकी आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। अब आपको आवाज़ साफ आ रही है, खुशी की बात है।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी भी हो तू, जैसी भी हो।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी भी हो तू, जैसी भी हो।

और ये था चौधरी रुखसार अहमद साहब का तोहफा, जिसे उन्होंने बेइंतहा सराहा और पसंद किया है। यह आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी पसंद को इस कदर सराहा और पसंद किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने इस जमान में रखे। आपका फूलों का गुलदस्ता मुझ तक पहुंच चुका है और ये आज दो फूलों का गुलदस्ते हो गए, जगह बना के हमने यहाँ सजा दिया है। इसमें आपकी मोहब्बत की और फूलों की खुशबू ने इन दोनों फूलों की गुलदस्तों की मदद से स्टूडियो को महका दिया है। अल्लाह आपको खुश रखे चौधरी साहब। और कहते हैं कि शकील भाई तशरीफ़ लाए थे, बेइंतहा खूबसूरत कलाम था और बेइंतहा खूबसूरत अंदाज उनका हमें बहुत भाता है। हमारा मोहब्बत भरा सलाम शकील भाई की खिदमत में पेश कर दें। वो यकीनन मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका सलाम पेश कर दिया गया है। अब मैं चल रहा हूँ, हमारी मोहतरम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा लंच ब्रेक पे तशरीफ़ ला चुकी हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा वो लाई हैं आप सबके लिए। और ये फरत अब्बास शाह की गज़ल है कि तुम जो होते तो हमें कितना सहारा होता, तुम जो होते तो हमें कितना सहारा होता, हमने औरों को ना यूं दुख में पुकारा होता। तुम जो होते तो हमें कितना सहारा होता, हमने औरों को ना यूं दुख में पुकारा होता। और जितनी शिद्दत से हैं वाबिस्ता था तुमसे फरहत, जितनी शिद्दत से मैं वाबिस्ता था तुमसे फरहत, किस तरह मेरा तेरे बाद गुजारा होता। और हम बैठ के खामोशी से रोए जाते, शाम होती किसी दरिया का किनारा होता। तूने सोचा है कभी कितना मोहब्बत के बगैर, तूने सोचा है कभी कितना मोहब्बत के बगैर, रूह फरसा दिले वीरां का नजारा होता। मुझको ये सोच ही काफी है जलाने के लिए, मैं ना होता तो कोई और तुम्हारा होता। क्या बात है, फरत अब्बास साहब, फरत अब्बास शाह साहब की कलाम की खुसूसियत सिर्फ एक चंद अशार से ही जाहिर हो गई। बहुत खूबसूरत इंतखाब था। और डॉक्टर साहब, अब आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर और रोज़ाना तशरीफ़ लाकर आप हमारे प्रोग्राम की हिम्मत अफजाई करती हैं। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए। आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

दोस्तों, हस्बे वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं ओल्डम, जहां हमारे बड़े खूबसूरत सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक लिसनर और कॉलर मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब मौजूद हैं। उन्होंने फ़ोन किया था और उस वक्त हमारा वो सेगमेंट चल रहा था, एक शायर एक गीत दो फनकार। अब उनकी पसंद, उनकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम कर रहे हैं, कबूल कीजिए। और इसके बाद हम चलेंगे नॉर्थ हॉल लंदन, जहां से हमारे मोहतरम शहरयार साहब अपने अहल खाना के हमराह हमारी बज़्म में मौजूद हैं। और आज फिर उन्होंने मेरे कंधे पर बंदूक रख दी है कि अपनी पसंद की कोई सी भी गज़ल हमारे और हमारे अहल खाना के नाम कीजिएगा। तो इसके बाद मैं एकदम मेरे जहन में एक गज़ल आई जिसे सुनने का मेरा भी दिल चाह रहा था, सो वो हम नॉर्थ हॉल लंदन में शहरयार साहब आपके और आपके अहल खाना की नज़र करेंगे। उसके बाद शकील भाई हमारे इस वक्त बर्नले में मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र किया जाएगा। लेकिन अभी फिलवक्त चलते हैं ओल्डम, अय्यूब चौहान साहब का तोहफा उनकी नज़र कर दें।

0: दोस्तों, ये पसंद थी हमारे मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब की। बहुत दिनों के बाद बड़ा खूबसूरत गीत है सुनने का मौका मिला, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अय्यूब चौहान साहब का। लेकिन क्यों ना हम उनकी आवाज़ आपको सुनवा दें। अय्यूब चौहान साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिफत बाज भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। अय्यूब आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ, बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था। कभी कभी सुनते सुनते मेरी आंख भी लग जाती है।
0: अरे वाह, लोग तो गोलियां खा के नींद आती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हक से बोलते सो भी लेते हैं।
1: हाँ, वो क्या कि म्यूजिक के साथ कुछ लगन ऐसा होता है कि वो म्यूजिक के बगैर कभी कभी नींद नहीं आती ना।
0: अच्छा, चलिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं।
1: तबीयत ही कुछ ऐसी है, पिछले हफ्ते ब्रेड फूट आते आते रह गए, बस वो बेटा कुछ काम था ब्रेड फूट, तो वो वापस आया तो मैंने कहा मुझे भी ले जाना था। वो अब तुम्हारी माँ भी तैयार थी जाने के लिए, तो बस कुछ तो वो कह रहा था फिर किसी दिन।
0: ये तो बड़ा सितम हो गया साहब,
1: बड़ा
0: एक बहुत सुनहरी मौका हाथ से निकल गया।
1: नहीं, वो वादा उसने किया, वो असल में वो क्या कि मोटरवे पर हम किसी नई जगह पर जाने के लिए वो जगह ढूंढने के लिए और बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्राइविंग करना, तो इसलिए वो रिस्क ले लेता है ना बेटा।
0: तो आप सेटनेव इस्तेमाल नहीं करते अय्यूब साहब
1: जी?
0: सेटनेव जो आता है, जो रास्ता बताता रहता है कि अब मुड़ो।
1: वो नेविगेशन सिस्टम नहीं, वो तो है लेकिन उसमें ऐसा होता है कि वो किसी गलत लाइन में चले जाओ तो दूसरी में जाने के लिए
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी।
1: और शायर कहते हैं अनजान राहों में अनजान रास्ते, कुछ ऐसी शायर लोग कहते हैं ना, तो बस वही प्रॉब्लम हो जाती है।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी जी।
1: ये भी अच्छा था, लेकिन ये मेरी ये मैंने नहीं कहा था, पर चलो वो कॉल कर देंगे, ये भी अच्छा ठीक है, हो गया
0: ठीक है।
1: जो दूसरा था वो खाली मसूद राणा की आवाज में था।
0: अच्छा, ये दुगाना था?
1: हाँ, ये दुगाना था, वो खाली मसूद राणा की आवाज में। चलो कल वो रिक्वेस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा, ये शायरी है। हमारे गांव में जब भी कोई बारात आती थी,
0: तुम्हारे गांव में जब भी कोई बारात आती थी,
1: इन्हें हमारे गांव में जब भी कोई बारात आती थी, ख्यालों ही ख्यालों में वो लड़की झूम जाती थी।
0: वाह वाह।
1: पहन कर अपने कानों में किसी के नाम के बूंदे, वो दिल की शब के लॉकेट को सीने पर सजाती थी।
0: लॉकेट को सीने पर सजाती थी।
1: परिंदे दोस्त थे उसकी आवाज उसकी सहेली थी।
0: क्या खूबसूरत मंजर कशी है, वाह वाह वाह वाह।
1: परिंदे दोस्त थे, से जंगल की तस्वीरें बनाती थी।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: सुलगती दोपहर के रेशमी पीपल के छाँव में, दुआओं ही दुआओं में वो बारिश को बुलाती थी।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: घने शजर में बहती हुई नदी के साए में,
0: घने शजर के बैठे हुए नदी के साए में
1: वो गाती और संगत में हवा ताली बजाती थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वो गाती और हवा संगत में ताली बजाती, बहुत खूबसूरत ख्याल है।
1: गाना गाती थे, आवाज की ताली बजाती।
0: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत मंजर कशी।
1: महकती चांदनी रातों में खुद से खिलती रहती, पराए ख्वाब से बड़ी अपनी नींद सजाती थी। पहाड़ियों डाक बंगले पर न जाने कौन रहता था,
0: पहाड़ी डाक बंगले पे न जाने कौन रहता था,
1: वो जिसके वास्ते नदी पे कपड़े धोने जाती थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वो जिसके वास्ते नदी पे कपड़े धोने जाती थी।
1: तो बस इतनी सी शायरी थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे मुलाकात भी हो जाती है, चाहे कुछ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।
0: और अय्यूब आपके कलाम को रिजवान रिजवी साहब ने और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा ने बहुत पसंद किया है।
1: शुक्रिया रिजवान रजीब साहब का। वो
0: और हिमायूं परवेज साहब अभी अभी आए हैं अमरोहा से, कहते हैं वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब।
1: जी वो किसी दिन कराची जाना हुआ तो उनसे भी मुलाकात कर लेंगे।
0: जरूर जरूर, अल्लाह आपको मिलाए उनसे।
1: ओके ठीक
0: बहुत
1: है जी,
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया,
0: अयूब
1: खुदा
0: भाई,
1: हाफिज, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और जो आप थे अयूब चौहान साहब, ओल्ड हम से हमारे हमराह मौजूद थे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ, अमरोहा से तशरीफ लाए हैं हुमायूं परवेज साहब, और कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा। और कहते हैं कि वाह वाह वाह वाह वाह वाह, खूबसूरत कलाम, आला शायरी, बेहतरीन सादा और खुशगुन अंदाज। भाई वाह, ये तो बड़े मजे आ गए भाई। तो अब हम चलते हैं, मैं वादा नहीं भूला हूँ। और एक खुशखबरी ये भी सुना दूँ कि हमारे दो मेहमान जो आगाज प्रोग्राम में ही तशरीफ लाए थे, अब अपने घरों को तशरीफ ला चुके हैं, बाहर निकले हुए थे। एक हैं रियासत साहब, आप हर रसूल की हसीन फजाओं में हैं और अभी घर नहीं पहुंचे हैं, 15 से 20 मिनट उन्हें लगेंगे पहुंचने में। सुमेरा बिटिया भी आ गई हैं, उनका तोहफा भी हमने संभाल रखा है, आपकी कजन्स के नाम करेंगे मिडिलसब्रा में। अभी हम चल रहे हैं हस्बे वादा आपको लेकर नॉर्थ हॉल लंदन, जहां पर मौजूद हैं हमारे मोहतरम शहरयार साहब और उनके अहल खाना, और मेरी पसंद की एक गजल सुनना चाहते हैं। सो मैं अपनी पसंद लेकर हाजिर हूं, और आपने कहा था कि कुछ अशआर हमारी नज़र कर दीजिएगा। तो एक बहुत बेकायदा शायर हैं, उनका नाम है रिफत अब्बास, उनका एक कत्ता आपकी नज़र कर देता हूं कि इश्क भी क्या अजब शह है रिफत, कुछ अजब दिल का हाल रहता है। इश्क भी क्या अजब शह है रिफत, कुछ अजब दिल का हाल रहता है, और भूल जाता है आदमी सब कुछ, सिर्फ उसका ख्याल रहता है। आपका तोहफा हाजिर है, मेरी पसंद, आपकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

बहुत खूबसूरत कलाम भेजा है रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा की हसीन जोड़ी ने, जिसे हम शामिल प्रोग्राम करेंगे कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। क्या खूबसूरत इंतखाब है, जितनी दाद दी जाए कम है, बहुत खूबसूरत मरसा कलाम है। लेकिन अभी हम चल रहे हैं आपको लेकर हडिसफील्ड की हसीन फजाओं में, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाबे रियासत साहब अपने अहले खाना के हमरा, बाहर कहीं गए हुए थे, अभी तशरीफ लाए हैं। उनकी पसंद आप सब जानते हैं कि वो खां साहब मेहंदी हसन खां मरहूम के शदाई हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए खां साहब के और मगफरत फरमाए। उन्हीं की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आज उन्होंने सुनना चाहा है, पेश खिदमत है, कबूल कीजिए। सुमेरा बिटिया, हम आपको भूले नहीं हैं, आपका तोहफा आपका गीत मैंने क्यों कर रखा है। इंशाल्लाह रिजवान रिजवी साहब के जो कलाम का मैंने जिक्र किया उसके बाद वो हम आपकी नज़र करेंगे, आपकी कजन्स के नाम करना चाहती हैं ना, उनके नज़र कर देंगे।

0: और दोस्तों वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी जो अपने अख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है। कमर्शियल के फौरन बाद हम रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा कादमी का तोहफा अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम करेंगे। उसके बाद मुझे याद आ गया, सुमेरा बिटिया आपसे मैं थोड़ी सी माजरत करूंगा, इसलिए कि शकील साहब का गीत हमने वादा किया था उनसे कि उनकी नज़र करेंगे, तो शकील साहब के गीत के बाद हम आपका तोहफा आपकी प्यारी प्यारी कजन्स के लिए मिडिल ज़रा लेकर चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM, DAB Plus, मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
10: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
13: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: दोस्तो अब वक्त हुआ है कराची पाकिस्तान से आए हुए तोहफे को आप तक पहुंचाने का जिसे भेजा है रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने। ये बात बढ़ ही ना जाए कहीं बताने से, ये बात बढ़ ही ना जाए कहीं बताने से, छुपा छुपा के रखो जख्म दिल जमाने से। ये बात बढ़ ही ना जाए कहीं बताने से, छुपा छुपा के रखो जख्म दिल जमाने से। वो दोस्त है तो सदा उसका एतबार करो, वो दोस्त है तो सदा उसका एतबार करो, कहीं बिछड़ ही ना जाए वो आजमाने से। वो दोस्त है तो सदा उसका एतबार करो, कहीं बिछड़ ही ना जाए वो आजमाने से। सदा रहें यूं ही रोशन मोहब्बतों के चिराग, सदा रहें यूं ही रोशन मोहब्बतों के चिराग, के हर तरफ है उजाला उन्हें जलाने से। सदा रहें यूं ही रोशन मोहब्बतों के चिराग, के हर तरफ है उजाला उन्हें जलाने से। वो आशना ही नहीं दर्द की अजियत से, वो आशना ही नहीं दर्द की अजियत से, वो जख्म देता है हर पल नए बहाने से। वो आशना ही नहीं दर्द की अजियत से, वो जख्म देता है हर पल नए बहाने से। छुपाना आ ही गया है हमको दर्द दिल आखिर, छुपाना आ ही गया है हमको दर्द दिल आखिर, कि अब छलकते नहीं अश्क मुस्कुराने से। क्या खूबसूरत शेर है। छुपाना आ ही गया है हमको दर्द दिल आखिर, कि अब छलकते नहीं अश्क मुस्कुराने से। वो लौट आएगा दिल को यकीन है मेरे, वो लौट आएगा दिल को यकीन है मेरे, मिली है मुझको खबर गुल के मुस्कुराने से। वो लौट आएगा दिल को यकीन है मेरे, मिली है मुझको खबर गुल के मुस्कुराने से। अब आके बैठ गए तेरे दर पे या मौला, अब आके बैठ गए तेरे दर पे या मौला, हर एक मिराद मिलेगी इसी ठिकाने से। अब आके बैठ गए तेरे दर पे या मौला, हर एक मुराद मिलेगी इसी ठिकाने से। वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब फरजाना साजिद का ये कलाम था, और नजर किया था कराची पाकिस्तान से रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम। जीते रहिए, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे, नजरे बद से बचाए और अपने हिज्ज़ो अमान में रखे।

आखिरी से लिखा है। बहरहाल आपने जो गीत लिखा है वो मैं अभी वक्त है शामिल प्रोग्राम कर लूंगा। रिजवान रिजवी और अमरीन जोहरा, फिक्र की कतन जरूरत नहीं है। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर बंडले, जहां हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब ने यह खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, और इसके बाद सुमेरा बिटिया आपका तोहफा होगा। ओके, आपकी कजन्स के नाम। जीते रहिए।

और ये गीत था सुमेरा बिटिया का अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम, और आवाज थी श्रिया घोषाल की। और अब हम चल रहे हैं सचिन जोड़ी की जानिब, जो हमें इस वक्त कराची पाकिस्तान में सुन रही है। ढेर दुआओं के साथ, वक्त कम है मुकाबला सख्त है, तोहफा लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा, आपका तोहफा आपके मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम।

तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है। आ सको तो आ जाओ कि मेरे साथ ये फिजाएं भी सदियों से तुम्हारे इंतजार में हैं।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सेलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

اشهد ان لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है। आ सको तो आ जाओ कि मेरे साथ ये फिजाएं भी सदियों से तुम्हारे इंतजार में हैं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274 731 555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

और यही नशात आप डैब प्लस पे भी इस वक्त सुन रहे हैं, और अगर चाहें तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं। और सामीन हमारे इस वक्त की नशात आप लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पे भी सुन रहे हैं। और साथियों अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन नाज़रीन और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मोज़्ज़ज़ सुनने वाले इस वक्त जहाँ कहीं भी हमारी ये नसीहत सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे, अल्लाह सब आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अगर आप में से किसी की तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सभी को सेहत और सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामीन हस्पे मामूल हस्पे दस्तूर आज का ये प्रोग्राम भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल, पहले में आपके लिए हम कुछ गीत पेश करेंगे, कुछ आपकी पसंद के कुछ हमारी पसंद के, और इस प्रोग्राम के अगले दौर में अगले हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स का एहतमाम रहता है, जिसमें आप मोहतरम और मुआज़ सुनने वाले तशरीफ लाते हैं, अपनी आवाज़ों का जादू जगाते हैं, शायरी सुनाते हैं, गीत गाते हैं और इस महफिल को चार चांद लगाते हैं। और अगर कोई भी गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का फोन नंबर है 306677।

0: जी सामियन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रंगे महफिल के इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा आप खुशसलूबी से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हमारा मैं आप मुझे सुन रहे हैं बफर एजन रेडियो 1430 AM से। अगर आपको भी हमें कोई अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर, और आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें सुन सकते हैं www.bradfordasianradio.co.uk। अगर आप हमें पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में या यूके से बाहर कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉड नंबर मिलाना ज़रूर याद रखिएगा 00447809563 पर। उम्मीद करती हूँ आपको इस रंगे महफिल का ये गीत बहुत पसंद आएगा। यह गीत आप सभी लोगों के नाम पर।
1: कदे कोई वक्त नहीं कर सकता
2: जब तक
1: वो आप ना
2: चाहो

आहट सी कोई आए, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख को हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का, झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो।

0: 777.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
8: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
8: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
10: Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं बेफर एजन रेडियो 1439 AM पे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर। और अगर आप हमें यूके से बाहर सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी शेर व शायरी और गीत का कोई भी अच्छा सा लिंक हमें भेज सकते हैं और हमारे रेडियो में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिएगा, हमारा यूके का कोड नंबर मिलाना मत भूलिएगा, 00447800599563 पर। तो जी, आपके लिए पेश करते हैं एक अच्छी सी गज़ल। हमने गज़लों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, हमने गज़लों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन। अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, यार वो भी क्या दिन थे, तुमको भी संवारा मोहसिन। अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके, अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके, हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन। और हमको मालूम है, और हमको मालूम है लौट कर आना तेरा, नहीं मुमकिन फिर भी खुदारा मोहसिन।

0: और समीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और वसी शाह लिखते हैं कि अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं किस सदियों से अधूरा हूं मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं किस सदियों से अधूरा हूं मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। और इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, मेरे चेहरे पे चमकता हुआ आंचल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं किस सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो।
1: बहुत।

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त हम लाइव सेशन भी टिकटॉक पे जा रहा है, अगर आप हमें वहां पे कैच करना चाहें देखना चाहें तो आप आ सकते हैं। जी हाँ, टिकटॉक पे हमारा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का चैनल इस वक्त बिल्कुल लाइव है और आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। शायरी भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत भी हैं, लेकिन गीत उस तरफ हम बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शायरी आपको सुना रहे हैं। तो जितने भी इस वक्त टिकटॉक पे हमारे साथ या ऑनलाइन जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सभी को हम खुश आमदेद कहते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी को बताते चलें। जी हाँ, स्टूडियो का फोन नंबर है 01274।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का 1430 AM पे अगर आप हमें सुनना चाह रहे हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
0: और व्हाट्सएप
1: जी, अगर आप हमें यूके से बाहर सुन रहे हैं और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है याद रखिएगा, हमारा कोड जरूर मिलाइएगा 00447800599563। ठीक है, 00447800599563 पर।
0: परफेक्ट। और अब अगले गीत से पहले आपको शायरी सुना दीजिए।
1: सुना दे तो चलिए जी, आपको सुनाते हैं। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे,
0: क्या कहने,
1: कभी नींद में कभी होश में, वो जहां मिला उसे देख कर, ना नजर मिली ना जबां हिली, यूं ही सर झुका कर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, वो जुदा हुए तो बिखर गए।
0: बहुत खूब।
1: कभी अर्श पर
0: कभी फर्श पर,
1: कभी उन किधर
0: कभी दर बदर,
1: कभी आशिकी
0: तेरा
1: शुक्रिया, हम कहां से
0: गुजर गए।
1: परवीन शाकर की बहुत ही प्यारी सी गजल आपको सुनाई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा।
0: और अब दीवानापन सुनने वालों के लिए पेश करते हैं और हमें जो भी गीत सुनना चाहें वो हमारी वेबसाइट पे जाइए। ठीक है,

0: जी सामीन, अभी हमें कॉलर की कॉल आई थी रुखसार साहब की, जो कि हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद है, मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से हमें कॉल आई थी रुखसार साहब की। बहुत ही मौजूद इंसान है और हमें ऑलवेज कॉल करते हैं हमारे स्टूडियो पे, अच्छी अच्छी से शेर व शायरी सुनाते हैं, गजल सुनाते हैं। तो क्यों ना मैं भी आपको एक गजल सुना दूं।
1: जी जी जरूर।
0: तो ये हीर की तरफ से है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी तबीयत से रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों हुआ पश्चिमां दरिया हमसे, मुद्दतों हुआ परेशान दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। मुद्दतों बाद खुली वस्ते सहरा हमस पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। मुद्दतों बाद मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, क्या बात है, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई।
1: और
0: अब आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पर रवानी आई।
1: क्या कहने, क्या कहने। और अभी हमारे साथ लाइन पे थे,
0: थैंक यू हियर फॉर द रोज,
1: रुखसार चौधरी साहब। तो उन्होंने गीत सुनना चाहा, सूरज हुआ मद्दम, तो उनके नाम करते हैं।
0: चलें जी, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम।
2: कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ

0: Radio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
12: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया है तो आपको बताते चलें कि आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशियात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं ब्रेडफोर्ड में। और इस वक्त की ये नशियात आप लिंक FM शेफील्ड से भी 96.7 FM के जरिए सुन रहे हैं। और अब वक्त है जब आप सुनने वालों की हम लाइव कॉलर से मुलाकात करवाते हैं, और आज टिकटॉक लाइव पे भी साथ साथ हम चल रहे हैं, तो उस एतबार से हमारे बहुत से सुनने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी सना, आप बताइए कौन है हमारे साथ?
1: हमारे साथ UAE से हमारी कॉलर है, आई डोंट केयर के नाम से।
0: जी जी, आई डोंट केयर। जी जी, अपना नाम बता दीजिए मोहतरम, ताकि आपसे भी बात हो सके।
2: बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मेरा नाम अब्दुल्ला है।
0: अब्दुल्ला, आपका नाम अब्दुल्ला? जी जी। अच्छा जी जी, तो अब्दुल्ला आपको खुश आमदेद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और बताइएगा आज के इस प्रोग्राम में आप कौन सा कलाम शामिल करेंगे?
2: बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज्जत से नवाजी, और मैं अहमद फराज साहब का एक कलाम है, मैं वो सुनाऊंगा।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
2: बहुत शुक्रिया। अहमद फराज साहब फरमाते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं,
0: क्या कहने वाह,
2: सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: सुना है रब्त है उसको खराब हालों से,
0: क्या कहने,
2: सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं,
0: क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।
0: हाँ हाँ, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।
1: बहुत,
0: वो कहते ना कि मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, आज से एक और दीवाना हमारा हो गया।
1: वाह क्या बात है,
2: बहुत अच्छे। सुना है उसे भी है शेर व शायरी से शगफ,
0: वाह वाह,
2: सो हम भी मौजज़े अपने
0: हुनर के देखते हैं। बहुत खूब,
1: बहुत
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
0: क्या कहने,
2: ये बात है तो
0: चलो बात करके देखते हैं। और मुझे इससे बशीर बद्र का वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है।
2: बहुत अच्छे, क्या कहने। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है,
0: खूब है,
2: सितारे बामे फलक से उतर के
0: देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब,
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के
0: देखते हैं। ये शेर फिर से पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर
0: के देखते हैं। और मुझे परवीन शाकिर का इससे वो अक्सर शेर याद आ जाता है कि जुगनू को दिन की लो में परखने की जिद करें, जुगनू को दिन की लो में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए।
2: बहुत अच्छे, क्या कहने। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें,
0: वाह वाह,
2: सुना है उसको हिरन दश्त
0: भर के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत
2: बहुत शुक्रिया। सुना है रात से बढ़कर हैं काकले उसकी,
0: वाह वाह,
2: सुना है उसको साए गुजर के देखते,
0: हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं,
0: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं,
2: सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं,
0: क्या कहने, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। सुना है आईने तमसाल है जबीन उसकी,
0: जबीन उसकी,
2: सुना है आईने तमसाल है जबीन उसकी, जो सादा दिल है उसे बन
0: संवर के देखते हैं। बहुत
1: बहुत
2: शुक्रिया। और सुना है जब से हम आयल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो
0: गोहर के देखते हैं, क्या कहने, क्या कहने,
2: बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप। और सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इमकान है,
0: इमकान तक। हाँ
2: पलंग जाविये उसकी कमर के
0: कमर के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है
0: क्या कहने,
2: कि फूल अपनी
0: कबाहे
2: कमाए
0: कतर
2: उतर
0: के
2: के देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: बहुत शुक्रिया। और वो सरोकद है मगर बेगुले मुराद नहीं,
0: हाँ हाँ वो सर्व
2: कि
0: कद
2: उस
0: है मगर
2: शजर पे
0: बेगुले मुराद नहीं। हाँ हाँ
2: वो सरोकद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उस शजर पे शगुफे समर के
0: समर के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं,
2: बहुत
0: क्या
2: खूब,
0: कहने,
1: बहुत
0: क्या कहने।
1: अच्छे,
2: बहुत
1: बहुत अच्छे।
2: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का,
0: हाँ
2: सोरे रवान तमन्ना भी डर के
0: डर के
2: देखते हैं।
0: देखते हैं,
1: बहुत अच्छे।
2: बहुत शुक्रिया। और सुना है उसके शबिस्तान से मुतसिल
0: मुतसिल
2: है
0: है बहे,
2: बेहश्त,
0: ये सबसे खूबसूरत शेर है इस गजल का,
2: बहुत
0: मुझे बेहद
2: खूबसूरत शेर
0: पसंद
2: है
0: है।
2: बिल्कुल।
0: जी
2: सुना
0: जी
2: है
0: उसके
2: उसके शबिस्तान से
0: मुतसिल
2: मुतसिल
0: है
2: है
0: बहे,
2: बेहश्त,
0: मकी उधर, आह
2: मकी
0: उधर
2: उधर
0: के
2: के
0: भी
2: भी
0: जलवे
2: जलवे इधर
0: इधर
2: के
0: के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं, क्या कहने। फिर
1: वाह
0: से पढ़िएगा। वाह वाह वाह
2: बहुत
0: वाह,
2: शुक्रिया। और सुना है उसके शबिस्तान से मुतसिल
0: मुतसिल
2: है
0: है बहे,
2: बहश्त,
0: मकी
2: मकी
0: उधर
2: उधर
0: के
2: के
0: भी
2: भी
0: जलवे
2: जलवे
0: इधर
2: इधर
0: के
2: के
0: देखते
2: देखते
0: हैं,
2: हैं।
0: क्या कहने।
2: और बहुत शुक्रिया। रुके तो गर्दिशें उनका उसका
0: तवाफ
2: तवाफ
0: करती
2: करती
0: हैं,
2: हैं,
0: हाँ
2: रुके तो गर्दिशें उसका
0: तवाफ
2: तवाफ
0: करती
2: करती
0: हैं।
2: हैं,
0: चलिए,
2: चले तो जमाने ठहर के देखते
0: हाँ
2: हैं,
0: हाँ चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं, क्या कहने।
2: ठहर के
0: बहुत
2: देखते
0: अच्छे,
2: हैं। बहुत
0: वाह वाह,
2: शुक्रिया। और किसे नसीब की बेपेरहन
0: उसे
2: उसे
0: देखे,
2: देखे,
0: हाँ हाँ
2: कभी कभी दरो
0: दरो दीवार
2: दीवार गर्क
0: घर के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे।
0: शुक्रिया।
2: और
0: फरहान
2: कहानियां ही सही,
0: सब,
2: सब मुबालगे ही सही,
0: हाँ हाँ
2: अगर वो
0: ख्वाब
2: ख्वाब
0: है
2: है तो ताबीर करके
0: करके
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं। बहुत खूब।
2: बहुत शुक्रिया। और आखिर में
0: फराज
2: शेर आखिर, अब उसके शहर में
0: ठहरे हैं
2: ठहरे के
0: कि
2: कूच
0: कुछ
2: कर
0: कर
2: जाएं,
0: जाएं,
2: अब उसके शहर में ठहरे
0: ठहरे
2: के
0: कि
2: कूच
0: कुछ
2: कर
0: कर जाएं।
2: जाएं,
0: फराज
2: फराज
0: आओ
2: आओ सितारे
0: सितारे
2: सफर के
0: सफर के
2: देखते
0: देखते
2: हैं।
0: हैं,
1: क्या बात
0: क्या
1: है,
0: कहने
1: बहुत
0: फराज के,
1: खूब,
0: क्या
1: बहुत
0: कहने।
1: शुक्रिया। बिग अप्लॉज।
0: बहुत खूब,
1: बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: खूब, बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। तशरीफ लाते रहिएगा, बहुत खुशी हुई। और आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं सारे का सारा प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइव कॉल्स ही हम देंगे, लेकिन जो गीत वगैरह हैं वो
2: जी बहुत
0: आप
2: शुक्रिया,
0: ऑनलाइन सुन
2: सलामत
0: सकते हैं।
2: रहे।
0: www.bradfordasianradio.co.uk की हमारी वेबसाइट है।
1: अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कॉल करना चाहते हैं या अपना कोई गीत हमें सेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो 0044 कोड जरूर मिलाइएगा। उसके बाद आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज कीजिएगा 7800599563 पर।
0: और जी हाँ, सगीर साहब आपने शेफील्ड से हमें याद किया था, बेहद शुक्रिया आपका अदा करते हैं। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं तो आप भी कॉल मिला सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप जानते ही हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 के जरिए आज की इस महफिल में आप शिरकत कर सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। आपके पास कुछ कलाम है सुनाने को?
1: मैं
0: जी
1: चेक
0: जी
1: कर लेती हूँ,
0: जी
1: कोई अच्छा
0: जी
1: सा
0: और
1: सुनाना है मेरे को।
0: इतने में यूं है कि एक खूबसूरत गीत हम सुनाते हैं, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, हम इधर बिल्कुल ऑफ सिर्फ रेडियो पे जाएगा। तो सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं और इंतजार करते हैं अपने अगले सामे का। जी जी
1: यहाँ पे

0: और
1: यहां
0: इस
1: से ही लाइव जाना है हमें?
0: जी जी आप ही इस वक्त लाइव हो गई हैं स्टूडियो पे, आपकी आवाज सुनने वाले सुन रहे हैं
1: जी। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप, खैरियत से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम।
0: जी जी
1: आप मजे में, आप सब खैरियत से हैं?
0: अल्लाह का एहसान है। जी जी
1: चलिए मैं आज आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि वो हर सवाल का खुशबू जवाब रखता है, वो हर सवाल का खुशबू जवाब रखता है कि अपने लहजे में हर पल गुलाब रखता है।
2: क्या बात है,
0: क्या कहने।
1: इसे चराग के बुझने का कोई खौफ नहीं,
0: इसे चराग के बुझने का कोई खौफ नहीं,
1: इसे चराग के बुझने का
0: कोई
1: खौफ
0: नहीं,
1: नहीं, वो अपने पास कई आफताब रखता है।
0: क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये, क्या ही खूबसूरत शेर है। वाह वाह वाह वाह।
1: उसे चराग के बुझने का कोई खौफ नहीं, वो अपने पास कई आफताब रखता है।
0: और कहते हैं ना कि निगाह बर्क नहीं, हीर एक शेर याद आया कि निगाह बर्क नहीं चेहरा आफ्ताब नहीं, निगाह बर्क नहीं चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं।
2: क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: आय हाय, क्या कहने हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। इस पे मैं कहूंगी कि है प्यार तुमसे मगर तुमने जो दिए ये दिल,
0: वाह
1: है प्यार तुमसे मगर तुमने जो दिए ये दिल, इन आंसुओं का भी सारा हिसाब रखता है।
0: बहुत
2: खूब, बहुत खूब।
1: हमें खबर ना हुई और उम्र बीत गई,
0: वाह
1: हमें खबर ना हुई और उम्र बीत गई, वो एक चेहरा मगर दो नकाब रखता।
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, फिर से पढ़िएगा ये, वाह वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा।
1: कहते हैं कि हमें खबर ना हुई और उम्र बीत गई, वो एक चेहरा मगर
0: दो नकाब रखता है। बहुत अच्छा।
1: है एक बात ये अच्छी मेरे सितमगर की,
0: है एक बात अच्छी ये मेरे सितमगर की,
1: ये अच्छी मेरे सितमगर की, वो हर किताब में चाहत का
0: बाप रखता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा।
1: हो कैसे शुक्र अदा रब्बे कायनात तेरा,
0: हो कैसे शुक्र अदा रब्बे कायनात तेरा,
1: अदा रब्बे कायनात तेरा, जो नियतों पे भी ढेरों
0: सवाब रख। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये, बहुत ही खूबसूरत शेर है। वाह वाह वाह वाह।
1: कहते हैं कि हो कैसे शुक्र हो कैसे शुक्र अदा रब्बे कायनात तेरा, जो नियतों पे भी ढेरों सवाब रखता है।
0: और कहते हैं ना कि हीर के हीर, इससे भी एक शेर याद आ गया कि निशान सजदा सजा कर बहुत गरूर न कर, निशान सजदा सजा कर बहुत गरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है।
1: अरे अरे अरे, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। तो इस पे लास्ट टू लाइन्स है, मैं ये कहूंगी कि ना टूट जाए भरम, ना टूट जाए भरम, सो हमारा दिल अक्सर बहुत छुपा के दुखों की किताब
0: किताब रखता है। बहुत खूब।
1: बहुत शुक्रिया जी, आपकी समाज सुनता है, थैंक यू सो मच।
2: बहुत
1: यहाँ पे मेरी फैमिली भी सुन रही है और स्पेशली मेरी सिस्टर मैनचेस्टर से, वो सुन रही है आपको,
0: और
1: उनका अब मैसेज आया कि बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है।
0: बहुत शुक्रिया। और शकील साहब भी अब हमारे साथ हैं, तो शकील साहब को भी खुशामदीद कहते हैं अभी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब जी, शकील साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, हेलो शकील साहब की,
2: शकील साहब की ऑलवेज कॉल ड्रॉप हो जाती है,
0: हम इंतजार कर रहे हैं, अगर शकील साहब दोबारा कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह इनसे दोबारा हमारी बात हो जाएगी, हम इंतजार कर रहे हैं शकील साहब, जब तक आप आते हैं तो हम इधर से अपने जो टिकटॉक पे हमारे साथ सुनने वाले हैं इन्हें शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कौन है हमारे पास?

जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, है गालबन शकील साहब की कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम यूँ करते हैं कि इधर से हम, अगर हमारे कोई सामने मौजूद हैं तो उन्हें हम ऑन ऑन द एयर ले लेते हैं।

जी शकील साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज आप दोबारा कॉल कर लीजिए ताकि आपको हम ऑन द एयर लेके चलें। आप गलबन, आपकी 2 बार कॉल ड्रॉप हो चुकी है, हमने अपनी तरफ से ऑन द एयर किया है। आप एक बार फिर कोशिश कर लीजिए ताकि अगली ब्रेक से पहले पहले हम आपको ऑन द एयर ले सकें। हम आपकी कॉल के मुंतजिर हैं।

0: और जी हाँ सामीन, अब हमारे साथ मैनचेस्टर से बहुत मुद्दत के बाद तशरीफ लाई हैं हमारी बहुत ही रेगुलर कॉलर, तो हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: जी,
1: अस्सलाम,
0: क्या हाल
1: कैसे
0: है?
1: हैं
0: ठीक
1: आप?
0: है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक है आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मजे में।
0: बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुनी और बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं हम।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी जी
1: और जो सिस्टर बैठी हैं उनको भी मेरा सलाम।
0: जी जी
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: जी
1: थैंक यू
0: जी
1: सो मच। वालेकुम अस्सलाम
0: जी जी
1: जी।
0: और सुनाइए, आज सुनने वालों के लिए क्या तोहफा आप लाई हैं?
1: हाँ बस कुछ पकोड़े हैं, कुछ समोसे।
0: ये देखें कितनी बर्दस्ता जवाब दिया, कुछ समोसे कुछ
1: इसका मतलब है
0: पकोड़े।
1: मैनचेस्टर में बारिश हो रही है तो आपने बना लिया पकोड़े
0: अच्छा,
1: फिर।
0: और गुड़ और मूंगफली का क्या बना?
1: हाँ, वो बाद में मिलेगी ना भाई,
0: गुड़ और
1: पहले
0: मूंगफली भी
1: ना,
0: तो होने
1: हाँ
0: चाहिए
1: पहले
0: थे ना।
1: नमकीन उसके बाद
0: नमक पारे,
1: बाबू।
0: नमक पारे भी होते हैं ना, बादाम भी, ताकि शेर याद रह सके।
1: हाँ
0: जी
1: मतलब तुम अपनी लंबी लिस्ट खोल लिया आपने।
0: जी
1: अच्छा ये भी ठीक है,
0: हाँ, आपने फिर
1: नॉट
0: एक
1: एट ऑल।
0: चटनी
1: चटनी
0: भूल गए, हीर कह रही है चटनी भी तो है। चटनी भी। सही सही सही, चलिए चलिए ठीक है, तो शायरी से करते हैं आगाज, आप कुछ सुनाइए।
1: जी बिल्कुल। आरजू हसन है कोई,
0: जी
1: और लिखा है उन्होंने कि वक्त की धूप में अपनों को बदलते देखा।
0: वक्त की धूप में अपनों को बदलते देखा, क्या कह रहे?
1: जी, वक्त की धूप में अपनों को
0: बदलते
1: बदलते
0: देखा,
1: देखा, मैंने चेहरों से नकाबों को उतरते
0: उतरते देखा,
1: देखा।
0: क्या
1: क्या
0: कहने
1: बात,
0: क्या कहने,
1: क्या
0: बहुत ही
1: बात,
0: खूबसूरत।
1: थैंक यू
0: वाह
1: सो
0: वाह
1: मच।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: जिन पे नाज था कभी सबसे ज्यादा, उन रिश्तों को भी हाथों से फिसलते
0: फिसलते
1: देखा।
0: देखा, क्या खूबसूरत गजल लाई है, क्या कहने
1: शुक्रिया।
0: सादिया, क्या कहने।
1: कल जो कहते थे कि साए की तरह साथ रहेंगे,
0: कल जो कहते थे कि साए की तरह साथ रहेंगे,
1: जी कल जो कहते थे कि साए की तरह साथ रहेंगे, आज उन्हीं को हर मोड़ पे रास्ता बदलते
0: बदलते देखा,
1: देखा।
0: क्या
1: बहुत
0: कहने
1: खूब,
0: क्या
1: बहुत
0: कहने।
1: खूब,
0: कहते हैं ना कि
1: शुक्रिया।
0: ताल्लुकाते गुज़श्ता से भी मुकरने लगा, ताल्लुकाते गुज़श्ता से भी मुकरने लगा, वो देखते ही मुझे रास्ता बदलने लगा।
1: क्या कहने, बोझ लगने लगे जो अपने ही साए हमको,
0: आहा, बोझ
1: बोझ
0: लगने ही
1: लगने
0: लगे
1: लगे जो अपने ही साए
0: साए हमको।
1: हमको, वक्त ने ऐसे अंधेरों में उतरते देखा।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: अब किसी से कोई शिकवा ना कोई गिला बाकी है,
0: अब किसी से कोई शिकवा ना गिला बाकी है।
1: ना कोई गिला बाकी है, हमने जिंदगी को नए अंदाज से चलते देखा।
0: बहुत
1: क्या
0: खूब
1: बात,
0: बहुत खूब।
1: टूट कर खुद को संभाला है कुछ इस हौसले से, टूट कर खुद को संभाला है कुछ इस हौसले से, मैंने पत्थर को भी आशियाना बनते देखा।
0: क्या कहने, क्या
1: क्या
0: कहने कि
1: कहने।
0: सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरम ठहरे, सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा।
1: हकीकत है, बहुत अच्छी। और एक और है,
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठा हूं,
0: हाँ,
1: दीन से दूर ना
0: मजहब
1: मजहब
0: से
1: से
0: अलग
1: अलग
0: बैठा
1: बैठा
0: हूं।
1: हूं, तेरी दहलीज पे हूं सबसे अलग बैठा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने।
1: ढंग की बात कहे कोई तो
0: हाँ,
1: बोलूं मैं भी, ढंग की बात कहे कोई
0: तो
1: तो
0: बोलूं
1: बोलूं
0: मैं भी।
1: मैं भी, मतलब ही हूं किसी मतलब से अलग बैठा हूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: शुक्रिया। बज़्मे अहबाब में हासिल ना हुआ चैन मुझे,
0: हाँ,
1: मुतमईन दिल है बहुत जब से अलग बैठा हूं।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ
1: गैर से दूर मगर उसकी निगाहों के करीब,
0: हाँ
1: गैर से दूर
0: मगर
1: मगर
0: उसकी
1: उसकी
0: निगाहों के
1: निगाहों के
0: करीब
1: करीब, महफिले यार में इस ढब से अलग
0: अलग
1: बैठा
0: बैठा
1: हूं।
0: हूं। बहुत खूब।
1: शुक्रिया। यही मसलक है मेरा और यही मेरा मुकाम,
0: हाँ,
1: आज तक ख्वाहिशे मनसब से अलग बैठा हूं।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: उम्र करता हूं बसर गोशाए तन्हाई में,
0: उम्र करता हूं बसर,
1: जब से वो रूठ गए तब से अलग बैठा
0: बहुत
1: हूं।
0: अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने।
1: मेरा अंदाज नसी रहले जहां से है जुदा,
0: मेरा
1: सब
0: अंदाज
1: में शामिल हो
0: मगर
1: सबसे
0: सबसे
1: अलग
0: अलग
1: बैठा
0: बैठा
1: हूं,
0: हूं, बहुत खूब
1: दीन
0: बहुत
1: से
0: खूब।
1: दूर ना मजहब से अलग बैठा हूँ, तेरी दहलीज पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ, और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत सलाम, शकील भाई को बहुत
0: शकील
1: सलाम,
0: साहब की 2 बार कॉल ड्रॉप हो चुकी है और हम मुंतजिर हैं कि
1: और
0: दोबारा ब्रेक के बाद
1: फरियाद
0: आए।
1: भाई को भी सलाम, और
0: जी
1: गजाला जी को भी
0: जी जी
1: सलाम, और सबको मेरा बहुत सलाम, तमाम
0: बहुत
1: सुनने
0: बहुत
1: वालों को।
0: शुक्रिया,
1: थैंक
0: अपना बहुत
1: यू
0: ख्याल
1: सो मच,
0: रखिएगा
1: अपना ख्याल रखिएगा,
0: और
1: अल्लाह
0: तशरीफ लाते
1: हाफिज,
0: रहिएगा। बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह
1: अल्लाह
0: हाफिज।
1: हाफिज।
0: और सामिन, अब अगली ब्रेक में ज्यादा वक्त नहीं है, तो यूं करेंगे कि थोड़ी देर में अगली ब्रेक पे हम चलेंगे, और ब्रेक के दौरान हमारे, अगर आप टिकटॉक पे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसके बाद यूं होगा कि हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जितने भी, जैसे सगीर साहब आपने शेफील्ड से, रादरम से गालबन हमें कॉल की है, आपकी कॉल के भी हम मुंसिर हैं, आप दोबारा तशरीफ लाइए, और शकील साहब बे आपसे माजरत भी और आपका इंतज़ार भी है कि आप ब्रेक के बाद आएंगे और पहली कॉल आपकी ही लाइव जाएगी, हम हैं आपके मुंसिर। आपके पास कुछ सुनाने को है?
2: जी, मेरे पास है मोहसिन नकवी की बहुत ही प्यारी सी गजल,
0: जी,
2: उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।
0: जी, सुनाइए।
2: मना रही थी मुझे तर्ज इंतहा उसकी,
0: आहा।
2: मना रही थी मुझे तर्ज इंतहा उसकी, कभी न खुल सकी मुझ पर कोई अदा उसकी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: ना मैंने कोई सदा उसको दी ना वो लौटा,
0: आहा।
2: ना मैंने कोई सदा उसको दी ना
0: ना वो लौटा,
2: मेरी अना के मुकाबिल रही अना उसकी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: उसे खिराज मोहब्बत अदा करूंगा जरूर,
0: वाह,
2: उसे खिराज मोहब्बत अदा करूंगा जरूर, जरा मैं याद तो कर लूं कोई वफा उसकी।
0: बहुत खूब, क्या कहने मौसम।
2: वो चंद लोग मेरी तरफ थे क्या करते,
0: आहा।
2: वो चंद लोग मेरी तरफ थे क्या करते, उधर तो एक खुदाई थी हम नवा उसकी।
0: और अब ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे के बाद मुलाकात होती है।
3: And the winner is.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable, and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk. Or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
9: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK.
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: और सामिन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: देख ले
0: इकबाल
1: कैसे
0: भाई,
1: हो।
0: आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, आज ना जाने क्या हो रहा है कि फोन लाइन्स बिल्कुल सही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और हेलो, लग रहा है कि ये लाइन पे ही है लेकिन इनकी आवाज आ नहीं रही है। जी इकबाल भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक डायलॉग सुना दीजिए जो आपने सुनाना था। नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, या आप दोबारा कॉल काट के दोबारा कर लीजिए। अजी हाँ, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, और तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरी आंखों को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। और ये खूबसूरत शायरी आप सभी सुनने वालों के नाम, और आप देख सकते हैं कि हमारे फोन की लाइट झिलमिल करती रहती है इसी तरह स्टूडियो में, लेकिन जब हम लाइव लेके जा रहे हैं तो आज न जाने कुछ इशू हो रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इकबाल भाई हमारे साथ लाइन पे हैं। अगर आप देख सकते हो तो आप देख सकते हैं कि फोन लाइन जो है वो झिलमिल कर रही है ब्लू लाइट, और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। यूं करते के साथ साथ आप सुनने वालों को एक गीत भी सुनाते हैं, ऐ मेरे हम सफर। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आ रहा होगा।

0: यूं करते हैं कि आप इकबाल भाई लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कहाँ गायब हो गए आप? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: मुझे आवाज नहीं आ रही।
0: बिल्कुल आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सही अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी।
1: अच्छा, आप कैसे हैं सब?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आज कौन सा डायलॉग आप सुनने वालों को सुनाएंगे?
1: मैं तो ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दफा मुलाकात भी हुई।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे।
1: तो आज मैंने एक प्रेजेंटर को सुबह कॉल की, जो आयशा आयशा थी मेरे ख्याल।
0: जी जी।
1: मैंने वो अपने अंदाज में बात की तो वो डर गई।
0: आप डरा देते हैं अमिताभ बच्चन जब बनते हैं ना आप, पता है उनकी आवाज में ये डायलॉग सुना।
1: आपने कितनी आवाजें चेंज करके आते हैं आप। तो चलो मैं आपको सुना देता हूँ फिल्म दीवार का डायलॉग। तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर पिक्चर आई हुई थी ये फिल्म। तो यहाँ पहली बार मंदिर की सीढ़ी चढ़कर अमिताभ अपनी माँ के लिए भगवान के पास जाते हैं और दुआ मांगते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: कहता है, आज खुश तो बहुत होंगे तुम कि मैं हार गया, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा।
0: अच्छा अच्छा।
1: जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। मेरा बाप जी तो जी मर गया, मेरी माँ स्वर्ग होते भी विधवा बनी रही, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। मेरी गुलाम की सजा मेरी माँ को मत दो, जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे मेरी माँ दे दो, मेरी माँ दे दो, मेरी माँ दे दो।
0: बहुत अच्छे इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, अल्लाह
1: अल्लाह।
0: और रजिया सामीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे इकबाल BD5 से, शुक्रिया इनका अदा करते हैं। हमेशा खूबसूरत डायलॉग्स सुनाते हैं और हमारे सुनने वाले इनके डायलॉग्स बहुत पसंद करते हैं। आप अगर शायरी सुनाना चाहें आप शायरी सुना सकते हैं, अगर आप कोई गीत गाना चाहें गीत गा सकते हैं। तशरीफ लाइएगा, हम हैं आपके मुंतजिर।

और जी सामीन, अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 के ज़रिए आज की इस महफिल में आप शिरकत कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 20-22 मिनट्स हैं, अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें तो आप आ सकते हैं, आपको हम ऑन द एयर लेके जाएंगे।

0: और अब शकील साहब बड़ी
1: फाइनली
0: फाइनली हम उन्हें लाइन पे ले ही आए हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
2: जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी जी क्या हाल है आप? ठीक है खैरियत से? जी
2: जी आवाज आ रही है
0: जी
2: आपको?
0: परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज।
2: ठीक है, तो अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी
2: आप
0: जी
2: सुनाए कैसे?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है।
2: शुक्रिया। तो
0: जी जी
2: तुम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
2: मीर साहब, ईश्वरी रुखसार साहब है, नवीद भाई है, शफीक शफीक साहब है, इकबाल भाई आए थे, उनको भी सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, सादिया बहन है, और जितने
0: जी जी आज वो भी आई थी बड़े अरसे बाद सादिया।
2: सुना, उनको बड़ी अच्छी गजल लाई थी।
0: जी जी ऐसे ही।
2: सना साहब है, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो एक छोटी सी गजल है,
0: इनायत कीजिए।
2: मतीन नियाजी इनका नाम है।
0: मतीन नियाजी जी जी इनायत कीजिए।
2: वो कहते हैं, आदमी और दर्द से ना आशना मुमकिन नहीं।
0: आदमी और दर्द से ना आशना मुमकिन नहीं, क्या कहने?
2: वक्त से खाली हो कोई आईना मुमकिन नहीं।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने?
2: आदमी इंसान इंसान कामिल बन तो सकता है मगर,
0: आहा,
2: आदमी इंसान कामिल बन तो सकता है मगर, जिंदगी भर रह सके वो पारसा
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
2: दो किनारे जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी।
0: दो किनारे जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी।
2: हमसे एक दाने जफा उनसे वफा मुमकिन नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: कार फरमा जब रहे घर के नजर हाथों पैर,
0: आहा,
2: शहर भर में हो न कोई हादसा
0: मुमकिन नहीं।
2: नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: किस कदर हिम्मत शिकन है गुम रही का ये जवाब।
0: आहा,
2: किस कदर हिम्मत शिकन है गुम रही का ये जवाब।
0: आहा,
2: राह भरी अज इब्तदा ता इंतहा
0: मुमकिन नहीं।
2: शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का।
0: शीशा कोई चूर हो जाए तो फिर किस काम का।
2: मिट के हो आबाद ऐवाने वफा मुमकिन
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
2: आखिरी शेर कहते हैं, पत्थर को नचोड़े, पत्थर को नचोड़ने से क्या हासिल मतीन।
0: आहा,
2: तंग दिल इंसान हो हक आशना
0: मुमकिन नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी
2: मुजफ्फर रजमी इनका नाम है।
0: जी जी इनायत कीजिए।
2: अभी खामोश है शोरों का अंदाजा नहीं होता।
0: आहा,
2: मेरी बस्ती में हंगामों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: जिधर महसूस हो खुशबू उसी जानब बढ़ते चलो, जिधर महसूस हो खुशबू उसी जानब
0: बढ़ते चलो,
2: अंधेरी रात में रस्तों का अंदाजा नहीं होता।
0: आहा, क्या कहने।
2: जो सदियों के कसक लेकर गुजर जाते हैं दुनिया से।
0: वाह वाह।
2: जो सदियों के
0: कसक लेकर गुजर जाते हैं दुनिया से,
2: मुवर्रख भी उन लम्हों का अंदाजा नहीं, मुवर्रख को भी उन
0: लम्हों का अंदाजा
2: नहीं होता।
0: नहीं होता। बहुत खूब।
2: ये राबर है कि राजन है, मसीहा है कि कातिल है।
0: क्या मिसरा है। वाह वाह।
2: ये राबर है कि राजन है,
0: मसीहा है कि कातिल है।
2: हमें अपने नुमाइंदों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हस्बे हाल है।
2: नजर हो लाख गहरी और बसीरत आशना फिर भी,
0: वाह वाह,
2: निकाबों में कभी चेहरों का अंदाजा नहीं,
0: नहीं होता।
2: जमीन पर आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है।
0: जमीन पे आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है।
2: बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब। फिर से पढ़िएगा।
2: जमीन पर आओ फिर देखो हमारी अहमियत क्या है। बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता।
0: और मुझे भी एक शेर याद आया कि मोहब्बत को समझना है तो ऐ गाफिल मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ऐ गाफिल मोहब्बत कर, के साहिल से कभी तूफान का अंदाजा नहीं होता।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर कहते हैं, वफाओं के तसलसल से भी अक्सर टूट जाते हैं।
0: वाह वाह।
2: मोहब्बत के हसी रिश्तों का अंदाजा
0: नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब।
2: उतर जाते हैं रूह दिल में कितनी वसअतें लेकर,
0: वाह वाह,
2: उतरे जाते हैं रूह दिल में कितनी
0: वसतें लेकर
2: गजल के दिल जुबान लहजों का अंदाजा नहीं होता।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: यह तो आप ही से कहते हैं सलीके से सजाना आईनों को वरना है रज़्म।
0: वाह वाह।
2: सलीके से सजाना आईनों को वरना है
0: रज़्म।
2: गलत रुख हो तो फिर चेहरों का
0: अंदाजा नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब।
2: ठीक है वरी
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई जिसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, अभी जनाब शकील साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे। हमारे पास यूँ समझिए कि 15-16 मिनट्स हैं। अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें और आज के इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहें तो तशरीफ़ ला सकते हैं। और हमारे जितने भी टिक टॉक पे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आप भी आना चाहें तो आप यहीं पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, टिक टॉक पे जितने भी दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना चाहें तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिए और फिर यहीं से हम आपकी आवाज रेडियो पे पहुंचा देंगे।
1: अहमद साहब की तरफ से आपके लिए एक सॉन्ग है, तो हीर बताएं अहमद साहब को कौन सा सॉन्ग सुनना है। हेलो,
0: और जी हाँ, अब हमारे साथ जनाब रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
3: अल्हम्दुलिल्लाह इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जनाब मोहतरम आली जनाब इज्जत माब साहब सदर ग्रामी कदर बा इज्जत बाबकार बाजोक बाशोक बहुत नफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक और बार रिफत मेरे प्यारे भाई मोहतरम हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम। और इन सभी अलकाबाद के लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपका बेहद शुक्रिया।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपके साथ जो हस्ती विराजमान है हमारे लिए नहायत काबिले इज्जत काबिले इत्राम काबिले रिफत जनाब मोहतरमा सना साहबा, उनको भी मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा नहायत मोहब्बत नहायत अकीदत नहायत उल्फत से बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम अदाब है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह इतना म्यारी इतना उम्दा और इतना बिजी बिजी। हम तो मैंने सोचा कि आज शायद मैं कासर ही हो जाऊंगा आपसे बात करने से, यकीन करें, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत लकी है कि मैं मुझे ये शर्फ हासिल हो गया कि आपसे बात भी हो गई है।
0: जी जी, आपका हमें इंतजार रहता है कि आप जैसे मुखलिस दोस्त जो हैं वही हमारे इस प्रोग्राम का असासा हैं, वही हमारा सरमाया है। जी
3: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला ये मोहब्बतें ये चाहते ये उल्फतें ये प्यार इसी तरह बरकरार रहे और इस रेडियो को अल्लाह ताला रोजे ता क्यामत इसी तरह बादो शाद रखे और इसी तरह ये हंसता मुस्कुराता रहे और इसकी पूरी टीम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और किसी का मोहताज ना।
0: आमीन आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी जी।
3: तो माशाल्लाह मुझसे पहले जो शख्सियात आई थी, मेरा ख्याल है अब मैं अरफे आखिर में मैं ही हूँ के ख्याल है, तो माशाल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक मैं सुन रहा था माशाल्लाह, और जो सभी शख्सियात आई थी और मुझसे हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत बेहतर बहुत उम्दा बहुत म्यारी और माशाल्लाह इतनी अच्छी माशाल्लाह पोएट्री गजल जो कुछ भी उन्होंने फरमाया लाजवाब था।
0: बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए, बहुत नवाजिश।
3: तो सबसे पहले तो हमारे जनाब मोहतरम और हमारे ब्रॉडकास्टर सैयद तराब गदर साहब को जनाब बहुत बहुत सलाम दुआ। और
0: जी जी, आज तराब साहब जो है उनकी सेहत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी तो आज जल्दी गालबन सो गए होंगे मोहतरम की बिला।
3: मुझे आपसे शिकायत है आप उनका प्रोमो नहीं चलाते क्योंकि मैं सुनता ही रहता हूँ।
0: वो अगर उसका प्रोमो ना चलाया ना तो वो कहता है कि आप मेरे नाम से शोहरत पा रहे। देखिए मैं उसका प्रोमो अभी चला रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो कहेगा कि आप मेरे नाम से शोहरत पा रहे हैं तो आपको मेरे जो है ना आपको मेरा प्रोमो नहीं चलाना चाहिए। चलिए आपकी फरमाइश पे मैं अभी लगाता हूँ उसका प्रोमो।
3: नहीं ये तो आकबरियन चलाना चाहिए यकीन करें, मैं सुनता रहता हूँ, मैंने कभी तो शायद आप चलाएंगे ना खेले।
0: जी
3: वो
0: जी।
3: जैसे बोलते हैं ना वैसे माशाल्लाह कहता है कि अभी थोड़ा हैदर अजरब क्या कहने उनके
0: वहाँ। जी जी ऐसे ही है माशाल्लाह बड़ा एतमाद है उसमें। जी जी
3: क्या कहने क्या कहने।
0: जी जी।
3: और माशाल्लाह अभी उस्ताद मोहतरम किबला शकील साहब आए थे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जनाब माशाल्लाह वो पोएट्री कर गए हैं और जंगीर साहब है मुजफ्फर साहब है महबूब लाई भाई हैं चोरी फ्रियाज साहब है राना रवीर साहब हैं और भी जितने माशाल्लाह आपके माशाल्लाह इतने प्यारे और खूबसूरत लिसनर जो सुन रहे हैं सभी को मोहब्बत भरा चाहत भरा नहायत अकीदत से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: और मैं जनाब मैं वैसे मेरा नाक तो नहीं बनना माशाल्लाह
0: जी जी जरूर अपना हिस्सा डालिए जी जी
3: लेकिन मैं तोहफा तन जो है ना वो एक पोएट्री आपकी नजर और तमाम सुनने वालों की नजर करना
0: जी जी इनायत कीजिए
3: शायद लिखता है उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा
0: उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा वसी शाह वाह वाह
3: जी एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा
0: क्या कहने फिर से पढ़िएगा वाह वाह
3: बहुत शुक्रिया आप ये आपकी मोहब्बतें हैं आपकी चाहत है क्या लिखता है उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा
0: और रुखसार चौधरी साहब इसी से मिलता जुलता जनाब फराज का इतना प्यारा शेर था तो उसकी किसी ने पैरोडी बना के तो उसका बेड़ा गर्क किया था वो चलिए सुना ही देते हैं क्योंकि आप इतने प्यार से आए हैं तो इसी से मिलता जुलता शेर कुछ यूं था कि उसकी आंखों में मोहब्बत का नशा था फराज उसकी आंखों में मोहब्बत का नशा था फराज ये तो बाद में पता चला वो कमीनी चर्स पीती थी चलिए चलिए अब
1: आपकी प्यारी सी
0: जी जी वो शेर फिर से सुनाइएगा चलिए शेर आप सुनाइए कि उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा
3: उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा एक दिन आएगा
0: वो शख्स हमारा होगा क्या कहने
3: जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना
0: वाह वाह जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना
3: अगर ये तय है कि यही खेल
0: दोबारा होगा बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया जिसके होने से सांस चला करती थी
0: आहा
3: इस तरह उसके बगैर अपना
0: गुजारा होगा बहुत खूब बहुत
3: शुक्रिया इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है
0: इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है
3: और कुछ दिन में आया तो खसारा होगा
0: बहुत खूब वसी शाह के क्या कहने
3: कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में
0: कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में
3: मेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा
0: बहुत अच्छे
3: बहुत शुक्रिया जो मेरी रूह में बादल से गरजते हैं वसी
0: जो मेरी रूह में बादल से गरजते हैं वसी
3: उसने सीने में कोई दर्द उतारा होगा
0: बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ
0: जी जी
3: काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको
0: काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको
3: मेरे मौला का वसी जूं ही
0: इशारा होगा बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत शुक्रिया शाह साहब टाइम देने का अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आपको अपनी मान में रखे और मैं आपके लिए बहुत ही दुआएं करता हूँ और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआओं
0: अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे आमीन बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात और जी हाँ सामीन अब हमारे पास तकरीबन यूं कह लीजिए कि 7-8 मिनट्स हैं अगर हमारे कोई
1: और अहमद साहब के लिए अच्छा सा गीत लगा दें प्लीज उन्होंने
0: उधर अगर व्हाट्सएप टिकटॉक पे अगर हमारे कोई और सुनने वाले हैं तो हम ले लेते हैं
1: क्योंकि साहब हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है
0: चलिए एक गीत हम उनके नाम करते हैं
1: लेकिन शाह साहब से कहिए कि इब्रार सलाम अर्ज कर रहे हैं
0: बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम इब्रार साहब वालेकुम अस्सलाम आप उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे ठीक होंगे कहां से
1: इब्रार भाई

0: एक सेकंड, अभी पहले मेरे साथ लाइन पे हैं सगीर साहब शफील से, इन्हें हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील सगीर साहब।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब। बड़ी मुश्किल से दीदावर पैदा होता है चमन में, वो आज वही बात ही हमारे साथ।
0: जी जी
1: बड़ी मुश्किल से मिली लाइन आपकी।
0: जी जी चलिए, मिल तो गई आखिर। जी जी
1: नहीं, वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, इस वजह से मिल गई।
0: जी जी अल्लाह सलामत रखे, और बहुत माजरत जो आपको दिक्कत उठानी पड़ी काल में।
1: नहीं, कोई मसला नहीं। मैं अच्छा वो सुन रहा था साथियों के, बहुत सारे माशाल्लाह अच्छा पढ़ा उन्होंने, बहुत अच्छा। नई तरफ से आप सब साथियों को बहुत सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जितने भी आपके गेस्ट आए उन सबको बहुत सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और आपके जो कोस्ट है उनको भी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरे पास एक फराज की एक गजल है, थोड़ी सी सुना दूं अगर।
0: जी जी इनायत कीजिए, इनायत कीजिए।
1: कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ तो चल।
0: बहुत अच्छे।
1: कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ तो चलो। बहुत कड़ा है
0: सफर, थोड़ी देर साथ चलो। बहुत खूब।
1: तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है
0: ये जानता हूँ, मगर थोड़ी देर साथ चलो।
1: कहाँ कोई साथ देता है ये जानता हूँ, मगर
0: थोड़ी देर
1: साथ तो चलो।
0: क्या खूब है, क्या खूब है, वाह वाह।
1: ये एक शब्द की मुलाकात
0: भी गनीमत
1: है, गनीमत है।
0: क्या कहने,
1: ये एक शब्द
0: की मुलाकात भी गनीमत है।
1: गनीमत है। कैसे है कल की खबर, थोड़ी देर साथ तो चलो।
0: किसे है कल की खबर, थोड़ी देर साथ चलो। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के,
0: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के,
1: अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी है दूर सहर थोड़ी साथ चलो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब सकीर साहब।
1: तो फिर मंजिल जाना हमें भी करना है, तो फिर मंजिल जाना हमें भी करना है। शाहजी तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो।
0: क्या कहने जी, क्या कहने। कहते ना कि मैं जिंदगी की धूप में जलने से बच गया, हाथों में आ गया तेरा आंचल किसी तरह। जनाब
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहजी और सुनाए आप, ठीक है?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, ठीक ठाक है आप?
1: अभी आपके पास टाइम थोड़ा, फिर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट
0: जरूर
1: बैठे तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ कलाम सुनाएंगे। तो ये थोड़ी सी हमारी तरफ से जो ना मोदबाना गुजारिश किया आपको, कलाम थोड़ा सा, उम्मीद है आपको पसंद आया।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा आपका इंतखाब, बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाते रहिएगा, आपका इंतजार रहेगा। अल्लाह
1: हाफिज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज। अल्लाह
1: हाफिज। अल्लाह हाफिज।
0: और जी हाँ, अभी जनाब सगीर साहब शेफील्ड रादरम से हमारे साथ मौजूद थे। अब जो हमारे सुनने वाले हमारे साथ हैं अभी मौजूद हैं,
2: हमारे साथ इब्रार साहब मौजूद हैं।
0: जी जी इब्रार साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इब्रार साहब।
3: साहब क्या हाल है आप?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक है,
3: अल्लाह का करम है। मैं टेलफोर्ड से
0: आ रहा हूं। ओहो जनाबे वाला, जनाबे वाला, हमारे स्टूडियो की शान जान मान जनाब, क्या कहने आपके इब्रार हैदर साहब, खुश आमदीद।
3: बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखे हम पहले दिन से आपको सुन रहे हैं, जब आपको कोई भी नहीं सुनता था तो आप सुना करते थे।
0: बिल्कुल, जब लॉन्च हुआ था स्टेशन, ऐसे ही है। जी, बहुत यादें हैं आपसे वाबस्ता। जी जी ऐसे ही है।
3: सलामत रखे।
0: और उस दिन जो आपने हमारी रहनुमाई की थी, एक कॉन्टेक्ट हम ढूंढ रहे थे किसी पुराने साथी दोस्त का, और आपने जो मदद की थी, यकीन करें कि हमारी वो शाम बन गई थी। बड़ी यादें ताजा की बचपने की, वो हमारे जो गाँव के थे उनसे आपने हमारी मुलाकात करवाई, जिसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया था।
3: शुक्रिया आपका, बड़े टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई।
0: जी जी ऐसे
3: सलामत रखे आपको, अपने सुअमान में रखे।
0: आमीन आमीन। तो हमारे पास सिर्फ यूं कह लीजिए कि दो तीन मिनट्स हैं, तो कुछ न कुछ अशार दो तीन तो कम अज कम सुना दीजिए। जो आप मुनासिब समझते हैं, लेकिन दो ही मिनट्स हैं हमारे पास प्रोग्राम का।
3: एक दो बोल सुनाते हैं आपको।
0: जी जी इनायत।

0: बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया और इंशाल्लाह अगली महफिल में, अगले प्रोग्राम में आपका इंतजार रहेगा, जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जी हाँ सामिन, अब इसी के साथ ही इस आज का जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। और जी इसी के साथ ही अपने मेज़बान सैयद हसन को आज के रंगे महफिल से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दौरान प्रोग्राम अगर आपको कोई बात पसंद ना आई हो तो आपसे बहुत बहुत माजरत।
1: जी आप मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपकी सना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा रंगे महफिल का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर लाइव। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।

0: Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.